FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून 2026। इस वक्त सुबह की 5:56 और 40 सेकंड हो रहे हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं, हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश

0: शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली से अभी रिले किए जा रहे थे हिंदी में समाचार। हम एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत करते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करें समूह स्वर में इस देश वंदना के साथ।

अभी आप आनंद उठा रहे थे समूह स्वर में इस देश वंदना का। आइए अब सुनते हैं भक्ति गीत जिसे स्वर दिया है माधव इंगले ने।

ये भक्ति गीत आपने सुना जगजीत सिंह के स्वर में। कार्यक्रम आराधना में इस वक्त आप आनंद उठा रहे हैं भक्ति संगीत का। इस भक्तिमय वातावरण में और अधिक रस घुल जाएगा इस भक्ति गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, रचना है कबीर दास की।

लता मंगेशकर की गाय इस कबीर भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर।

0: FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:30 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं खेती की बात। विषय है पशुपालन एवं वर्षाकालीन पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। वाचन स्वर है चित्र रेखा तिवारी का।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। संगी हुआ, आज खेती के बात में हम विषय लेके आए हैं पशुपालन एवं वर्षाकालीन पशुपालन स्वास्थ्य प्रबंधन। संगवारी हुआ, जैसे कि बरसात के मौसम आ गए है और जिन समय हर फसल पर जैसे जरूरी होते वैसा ही पशुधन के देखभाल घलो बहुते जरूरी है। पशु के स्वास्थ्य प्रबंधन पर जानबो कि बरसात के दिन में अपन गाय भैंस बकरी और दूसर पशु मन ला बीमारी ले कैसे बचा सकत है और स्वस्थ रखे जा सकत है। त संगवारी हुआ, जानकारी के क्रम में बताइन कि पशुधन हर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार आए। दूध उत्पादन, गोबर खातु और अतिरिक्त आमदनी के स्रोत के रूप में पशुपालन हर किसान परिवार पर बहुतेच लाभदायक है। बरसात के मौसम में हरियर चारा के कमी नहीं रहा, फिर ये समय में पशु मन पर कई प्रकार के बीमारी के खतरा बढ़ जाते। कैसे? पानी भराव, नमी और गंदगी के कारण जीवाणु विषाणु परजीवी ये सब बहुत तेजी से फैलते। तका का करना है अपन पशुधन ला सुरक्षित रखे बर। सबसे पहली तो पशुशाला के साफ सफाई रखा। बरसात के समय में पशुशाला में पानी जमा हो जाते तो बिल्कुल जमा नहीं होने दे रहे। गोठान या बाड़ा के जमीन ला ऊंचा रखा ताकि वह सूखा रहे। अनियमित रूप से गोबर ला और गंदगी ला हटावत रहा। अब पशुशाला हर हवादार और रोशनी वाला होना चाहिए। दूसरा बात करबो स्वच्छ पानी और संतुलित आहार के। तब बरसात में दूषित पानी पिएले पशु मनला दस्त पेट संबंधी बीमारी और संक्रमण हो जाते। एकर बर हमेशा साफ और ताजा पानी भर के रखो। माने कोटना मन में जिसे पानी भरा है पहले दिन के तब भिनसरहा उठन तो कोठा साफ होते तेकर साथे साथ वो पानी ला फेंका और कोटना ला साफ धो के फिर ताजा पानी भर देव। ऐसे चक्र अपनावत रहो रोज। हरियर चारा के संगे संग सूखा चारा और खनिज मिश्रण जेला मिनरल मिक्सचर कथन ओला घलो जरूर देव। संतुलित आहार ले पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ते और दूध उत्पादन में भी सुधार होते। तीसर बात करो टीकाकरण के महत्व। बरसात के मौसम में गलघोटू लंगड़ा बुखार खुरपका मुंहपका जैसा ये सब बीमारी के खतरा बढ़ जाते। एकर बचाव बर समय में टीकाकरण करवाना बहुत जरूरी है। अपन नजदीक के पशु चिकित्सालय या पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता ले संपर्क करके निर्धारित कार्यक्रम अनुसार टीकाकरण जरूर करो। और फिर आंतरिक अब बाहरी परजीवी नियंत्रण। बरसात में कैसे होते बाहरी मतलब जोंक किन्नी माछी मच्छर ये सबके प्रकोप बढ़ जाते। ये मन पशु के खून चूस के कमजोरी लाते और बीमारी फैलाते। तो समय समय में कृमि नाशक दवाई देवा पशुशाला में कीटनाशक दवाई के छिड़काव करवावा। एकर ले पशु स्वस्थ रही और उत्पादन क्षमता भी बढ़िया रही। और पांचवा बताबो बीमारी के शुरुआती लक्षण और पहचान। अगर पशु हर खाना कम खावा थे दूध उत्पादन घट जावा थे बुखार आए खांसी हुआ थे या बार बार दस्त हुआ थे तो ये बीमारी के संकेत होते। ऐसा स्थिति में घरेलू इलाज के भरोसा नहीं रहा तो तुरंत पशु चिकित्सक के लिए सलाह लेवा और समय में उपचार ले बहुत बड़े नुकसान से आप बच सकत हो। और छठवा बात करबो नवजात बछड़ा और बकरी के विशेष देखभाल करे बर। बरसात के मौसम में नवजात जो छोटे छोटे लड़का हो रहे बकरी के हुआ के गरुआ के हुआ तेकर बर तुरंत पहली दूध पियाना जरूरी रहते जन्म के बाद। काबर के वहां रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहते तो नवजात ला बीमारी ले बचाना है तो तुरंत जो पहला दूध रहते हो जरूर पिलावा बछड़ा मल्ला। तो भाई किसान भाई बहनी मन बरसात के मौसम में थोड़ा सा सावधानी अपना के अपन पशुधन ला स्वस्थ रखा और साफ सफाई संतुलित आहार स्वच्छ पानी नियमित टीकाकरण और समय में उपचार ये सब उपाय ला अपना के पशुपालन ला अधिक लाभदायक बना सकत। आज के खेती की बात में आज के संगवारी हुआ, कल फिर नवा विषय के संग उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम, जय जो।
0: चित्रलेखा तिवारी से अभी आपने सुनी खेती की बात। सामयिक सुझाव का विषय था

पशुपालन एवं वर्षाकालीन पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:35 होने को हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान। गायन स्वर श्रीकांत पारगांवकर और साथियों का, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरा ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहाँ हैं, और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: रामचरितमानस गान अभी आपने सुना श्रीकांत पारगांवकर और साथियों के स्वर में। संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से हम बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह की 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम चिंतन। विषय है उपनिषदों की शिक्षा। आलेख सुश्री अंजलि मुखर्जी का।
1: उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के निकट बैठकर शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। हमारा देश अपनी सुसंस्कृति के लिए उपनिषदों का आभारी है। उपनिषद के अनुसार संसार में 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो किंतु कर्म करते हुए जियो। हमें जो जीवन मिला है उसका कुछ अर्थ अवश्य है। उस जीवन को न तो हमें कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, न ही रोध होकर जीवन जीना चाहिए। जो मानव एकरस जीवन से डरता है और कुछ नवीनता चाहता है, शायद वो मृत्यु के भय से डरता है। मृत्यु भय का होना प्राण की एक दुर्बलता का लक्षण है। यहां महान सम्राट ययाति का जिक्र करना उचित होगा। प्राचीन भारत के एक महान सम्राट ययाति अत्यंत भोग विलास में लिप्त रहते थे। जब उन्होंने बुढ़ापे में प्रवेश किया तब अपनी वृद्धावस्था के प्रति अत्यंत चिंतित हो उठे। उनके 5 पुत्र थे। उन्होंने अपने सभी पुत्रों से याचना की कि अपनी युवावस्था उन्हें दान कर दें और बदले में उनकी वृद्धावस्था को ग्रहण कर ले। बड़े 4 पुत्रों ने उनके इस अजीब प्रस्ताव को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया। सबसे छोटा पुत्र पितृभक्ति से द्रवित हो उठा और सहर्ष उसने अपना यौवन पिता को सौंप दिया और बदले में पिता के वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया। ययाति अब पुनः युवा हो गए। दूने उत्साह और उमंग से भरकर भोग विलास के जीवन में पूरी तरह डूब गए। इस स्थिति में वर्षों बीत गए। अचानक एक दिन ययाति ने देखा कि उनकी त्वचा में झुर्रियां पड़ रही हैं, केश सफेद हो रहे हैं और कमर झुकती जा रही है। बुढ़ापे के पुनरागमन से और आसन्न मृत्यु की संभावना से सम्राट ययाति घबरा गए, क्योंकि उनका हृदय भोग विलास की लालसा से अभी भी तृप्त नहीं हुआ था। धैर्यपूर्वक अपने संपूर्ण जीवन पर ययाति ने पुनः विचार किया। परिणाम स्वरूप अपनी मूर्खता पर वह अत्यंत शर्मिंदा भी हुआ। भागवत कथा के अनुसार ययाति ने अपने आप से कहा, भोग द्वारा काम कभी भी शांत नहीं होता, वरन काम की भावना अधिक प्रज्वलित हो जाती है, जैसे आग में घी पड़ गया हो। इसलिए मानव को रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध से दूर ही रहना चाहिए। इन्हें अपना शत्रु समझना चाहिए, तभी शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकेगा। काम क्रोध भोग ईर्ष्या आदि का परित्याग इतना सहज नहीं है। इसके लिए मानव को पहल करनी पड़ती है। किसी भी घटना के घटित होने के लिए ज्ञान क्रिया और इच्छा तीनों का समावेश ही उत्तरदायी होता है। बुद्धि तर्क शक्ति से भरपूर होती है। सोचने विचारने का कार्य भी वही करती है। मस्तिष्क आदेश देता है, मन इच्छा करता है, इंद्रियां तदनुरूप कार्य करती हैं, किंतु कर्म के परिणाम का विवेचन बुद्धि करती है। किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उसे स्वीकारना या त्यागना ये निर्णय बुद्धि करती है। यही बुद्धि जब अवचेतन मन के कुविचारों द्वारा चली जाती है तब परम ज्ञान भी विपरीत आचरण कर बैठते हैं और परम विद्वान दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ये माया ही भ्रांति है जो बुद्धि को अपने कौतुक विलास का उपकरण बनाती है। मन और बुद्धि का तालमेल तभी तक ठीक रहता है जब तक भ्रांति अपना माया जाल न फैलाए। इस माया जाल से मुक्त रहने के लिए ज्ञान क्रिया और इच्छा का परस्पर सहयोग आवश्यक है। ये भ्रांति ही है जो रस्सी को सांप और परछाई को भूत समझने का भ्रम उत्पन्न करती है, जिसने वृद्ध ययाति को यौवन प्राप्त करने के लिए दिग्भ्रमित किया। हमारी दृष्टि चूंकि अनंत काल के एक पल मात्र में सीमित रहती है और उस एक पल में हमें वो सब नजर नहीं आता जो हम चाहते हैं, इसलिए हम शिकायत करते हैं कि ईश्वर तूने ये दुनिया क्यों बनाई। अपने उस क्षण से निकलकर यदि हम चरम संपूर्णता में प्रवेश करें तो पूर्ण विकास

0: अवश्य नजर आएगा। जो आदर्श हमें अपनी ओर बुला रहा है, जो लक्ष्य हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है, वो हमारे अंदर ही है। हमें सिर्फ उसे पहचानना है, समस्त संसार के रूप को पहचान कर उसे पुनः अंगीकार करना ही हमारी प्रगति का द्योतक होगा। जो ईश्वर प्रदत्त है उसे उसी रूप में स्वीकार करना होगा। हम अज्ञान में जीते हैं और निर्वाण हमें अज्ञान से बचाता है।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम चिंतन, विषय था उपनिषदों की शिक्षा, आलेख था सुश्री अंजलि मुखर्जी का। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपको रूबरू करवाते हैं आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा से। समाचार प्रभात सुबह 8:00 मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 अंग्रेजी में समाचार आप सुनिएगा। अब से कुछ ही देर बाद 6:55 पर संस्कृत में और 7:00 हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से सुबह 9:55 11:55 और शाम 6:45 पर रिले किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से ही आप सुन सकेंगे शाम 6:10 पर।

आकाशवाणी रायपुर से सुबह 8:30 पर हम रिले करेंगे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। सुबह 9:00 रायपुर केंद्र से ही सुन सकेंगे आप कार्यक्रम बातों बातों में। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ सुनिएगा शाम 5:00। कार्यक्रम आज सुबह सुन सकेंगे सुबह 7:05 पर, शाम 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। बेरा के गोठ का आज का विषय होगा योग से जुड़े और मधुमेह का प्रबंधन करें। किसान वाणी कार्यक्रम सुन सकेंगे शाम 7:30 पर। भेंट वार्ता सुनिएगा खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती अपनाना विषय पर। इस बारे में तखतपुर बिलासपुर के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी श्री छत्रपति महलांगे से बातचीत करेंगे महंगू भैया। और साथ ही सुनिएगे आज के आप नियमित क्रम भी।

अब आपको जानकारी देते हैं गीत संगीत से जुड़े कार्यक्रमों के विषय में। सदाबहार नगमे सुनिएगा सुबह 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का कार्यक्रम अमराई सुन सकेंगे सुबह 10 बजे। आज आप सुनिएगा साखन सिंह मरावी, नवलदास मानिकपुरी, अनुसुईया मानिकपुरी और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोक गीत। नए गीतों का कार्यक्रम नए तराने सुन सकेंगे 10:30 पर। चित्रपट संगीत लेकर आएंगे हम शाम 5:05 पर। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने हम लेकर हाजिर होंगे शाम 6:20 पर। और इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे अलिशा चिनॉय के स्वर में कुछ गैर फिल्मी गीत। समय होगा रात्रि 8 बजे का। रजनीगंधा की खुशबू बिखरेगी रात 8:15 पर। इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका की विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। ये FM बैंड 103।

3.2 MHz पर आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत करते हैं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

स्वागत आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आज सुबह में आज के आपके साथ है आज आपकी रेडियो मित्र प्रियंका बलानी। श्रोताओं, दिन की शुरुआत अक्सर हम करते हैं अखबार पढ़ने के साथ, ताज़ा तरीन जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए तो कभी मनोरंजन के लिए। श्रोताओं, कुछ ही दिन पहले की बात है, अखबार पढ़ते हुए मेरी नज़र एक ऐसी खबर पर पड़ी जिसने मुझे हैरान कर दिया। खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला किया है जिसके अनुसार गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता माना गया है और किसी भी गृहिणी की दुर्घटना या मुआवजे के दावों के रूप में उनकी मासिक काल्पनिक आय 30,000 रुपये आंकी गई है। श्रोताओं, भले ही गृहिणी अपने कार्य के लिए कोई वेतन नहीं लेगी क्योंकि ये उनके सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्य होते हैं, परंतु रोजमर्रा के उनके कार्यों जैसे खाना बनाना, घर के काम, परिवार के सदस्यों की देखभाल का अगर आर्थिक रूप से आंकलन किया जाए तो 30,000 उनकी काल्पनिक आय हो सकती है। श्रोताओं, वैसे भी आज गृहिणियों के पास बाहरी कार्य करके भी आय प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आज पुरुष हो या महिला, छोटे स्तर पर ही अपना कार्य आसानी से शुरू कर सकते हैं। महिलाएं घर बैठे क्लाउड किचन, लॉन्ड्री, बुटीक, ब्यूटी पार्लर जैसे कई व्यवसायों से आय अर्जित कर सकती है। श्रोताओं, छोटे या मध्यम स्तर पर आज हम में से कोई भी अपना व्यापार शुरू कर सकता है। अपना कोई व्यापार हो या कोई पेशेवर सेवा, किसी भी तरह का आय अर्जन का कार्य करना आसान कर दिया है देश की शासन व्यवस्था ने। छोटे और मध्यम स्तर पर जितनी भी आर्थिक इकाइयां देश में कार्यरत हैं, सभी MSME के अंतर्गत आती हैं। MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। आज MSME दिवस के खास मौके पर हम कुछ बातें साझा करना चाहते हैं आपसे, छोटे व्यवसायियों और पेशेवरों को शासन द्वारा प्राप्त लाभों के बारे में। श्रोताओं, आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम विश्व भर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हुए हैं। 90% व्यवसाय MSME सेक्टर पर ही आश्रित है। रोजमर्रा के उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं और सेवाएं हमें इन्हीं उद्यमियों से प्राप्त हो रही हैं। ये उद्यम 60-70% रोजगार प्रदान कर रहे हैं और 50% GDP का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। MSME विशेष रूप से कम आय वाले कामगारों, महिलाओं और युवाओं को आजीविका प्रदान करने में सहायक हैं। आज जनसंख्या वृद्धि और नौकरियां प्राप्त करने में आने वाली कठिन प्रतियोगिता युवाओं में बेरोजगारी की समस्या पैदा कर रही है। ऐसे में अगर युवा चाहें तो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं और सहायता देगी सरकार। श्रोताओं, इसके लिए इच्छुक व्यक्ति या समूह को अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके बाद वे ब्याज मुक्त ऋण, मुफ्त प्रशिक्षण और सरकारी खरीद में प्राथमिकता जैसे कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत युवा उद्यमी बिना किसी गारंटी या कोलेट्रल के ऋण प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही परियोजना लागत का भी कुछ प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर्स के माध्यम से युवाओं को व्यवसाय प्रबंधन, तकनीकी कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। श्रोताओं, खुद का व्यवसाय कर युवा वर्ग आत्मनिर्भर बन सके।

और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में ये सबसे अहम भूमिका होती है युवा वर्ग की, और इसे आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाएं। श्रोताओं, इनका लाभ लेकर हम अपने सपनों को साकार करें।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, हम रोजाना आपको बिलासपुर शहर की यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारियां देते हैं। इसी कड़ी में लीजिए प्रस्तुत है आज के ट्रैफिक अपडेट।
3: नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन की तरह आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम अर्थात शहरी क्षेत्र के साथ ही गांव-गांव में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है। यह यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात

0: बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जिले में उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध बल के साथ साथ पूरे मनोवेग से यातायात का आमला आपको सुगम और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने कृत संकल्प है। शासन की अवधारणा के अनुसार 2400 घंटे सातों दिन यातायात का बल इस हेतु समर्पित है। फिर भी यदाकदा सड़कों में अप्रत्याशित स्थिति भी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से लोग इससे असहज होते हैं, पीड़ित होते हैं। यदि हम चाहें ये सब ठीक हो, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हम सभी व्यवस्था के अनुसार चलें, यातायात नियमों के अनुसार चलें। वो कुछ इस प्रकार। किसी भी चौक में यदि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं तो अपने बाएं तरफ, जिसे लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है, उसे छोड़कर खड़े हों, ताकि बाएं जाने वाले बिना रुके जा सके। शहरी क्षेत्र में सड़कों में व्यवस्था के लिए पीली पट्टी बनाई गई है। अपने वाहन हमेशा इस पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। नो पार्किंग जोन में कभी भी वाहन खड़ा ना करें, इससे जाम की स्थिति नहीं होगी। सड़क के किनारे स्थित दुकानदार अनावश्यक रूप से सड़कों तक सामान फैलाकर न रखें, ताकि सड़क पूरी पूरी स्वतंत्र रहे। ठीक इसी प्रकार सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और इस वाहन में तीन सवारी कभी न चलें। मोबाइल को वाहन चलाते समय भूल जाइए, अर्थात कोई भी वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। अपने वाहन चलाते समय रॉन्ग साइड ओवरटेक कभी न करें, यदि आवश्यक हो तो दाहिने तरफ से आगे बढ़ें। मालवाहक वाहनों में बॉडी से बाहर निकले हालत में माल कभी भी लोड ना करें, यह घातक हो सकता है। शराब सर्वनाश की जड़ है, यह सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है। अतः नशा से दूर रहें, नशा कर वाहन चलाने की गलती कभी ना करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हल्दीवा इंडिया। शुद्ध शहद A2 बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
2: कार्यक्रम आज सुबह में एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आपसे। श्रोताओं, हम अक्सर आपसे हमारे देश से, कभी हमारी पृथ्वी से संबंधित समस्याओं के बारे में बातें करते हैं, ताकि हम मिलकर उनके बारे में सोचें और उनका समाधान करने के उपाय कर सकें। फर्ज कीजिए कि हम किसी दिन जल संकट के बारे में बात कर रहे हों और ठीक उसी समय तेज बारिश हो जाए, तो क्या हम उस समस्या पर गंभीरता से विचार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर यही बात हम तपती गर्मी के मौसम में करें, तो जल संकट का नाम सुनते ही शायद हम गंभीर हो जाएं, क्योंकि जब बारिश हो रही हो, आसपास पानी ही पानी नजर आ रहा हो, तो भला किसे परवाह होगी जल संकट की? श्रोताओं, जल की एक एक बूंद महत्वपूर्ण होती है, फिर भी हम वर्षा जल को व्यर्थ ही बहने देते हैं। ऐसा करके हम वर्षा जल के महत्व को नजरअंदाज कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में जल का नुकसान होने दे रहे हैं। पानी की कीमत को अगर हम समझें, तो समझदारी इसी में है कि वर्षा के जल को हम पूरा पूरा उपयोग करें और इसे संग्रहित करके रखें, ताकि किसी भी मौसम में हमें पानी की किल्लत का सामना ना करना पड़े। हमें इसके लिए भूमि के अंदर मौजूद पानी के स्तर को गिरने से रोकना होगा। श्रोताओं, वर्षा जल को उचित तरीके से अगर वापस भूमि के भीतर पहुंचा दिया जाए, तो भविष्य में पानी की कमी होगी ही नहीं। भूजल संरक्षण और संवर्धन के कुछ तरीके आपसे हम साझा कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर वर्षा जल के संचय के लिए घर की छतों और सड़कों से व्यर्थ बहते पानी को पाइप के जरिए जमीन के अंदर पहुंचाने के लिए सोखता गड्ढे बनाएं और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। श्रोताओं, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने से होगा ये।

कि पेड़ों की जड़ों के माध्यम से बारिश का पानी जमीन के अंदर पहुंच जाएगा। खेतों में सिंचाई के लिए काफी मात्रा में पानी की खपत होती है, ऐसे में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा सिंचाई द्वारा हम अगर सिंचाई करें तो इससे भी पानी की काफी बचत हो जाती है। पुराने तालाबों कुओं की साफ सफाई करवाएं ताकि साफ वर्षा जल उसमें जमा हो सके और भूमि के भीतर पहुंच सके। घर के कामों में पानी का उपयोग हम किफायत के साथ करें, व्यर्थ पानी ना बहाएं। इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम भूजल के स्तर को कम होने से बचा सकते हैं और अपने जीवन को आसान और सुखी बना सकते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है और जल से ही सुखमय जीवन है।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
5: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन, कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह, सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान, ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम आज सुबह में इसी तरह नई नई जानकारियां आप प्राप्त करते हैं रोजाना सुबह 7:05 पर, फिर किसी रोज किसी नई जानकारी के साथ हम आपसे होंगे रूबरू। फिलहाल आज्ञा दें कार्यक्रम के समापन की।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सदाबहार नगमे।

सदाबहार गीत लेकर हाजिर हैं हम कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। श्रोताओं, संगीत हमारे चारों ओर है, संपूर्ण प्रकृति ही संगीतमय है। घड़ी की टिक टिक हो या ट्रेन की छुक छुक, कोयल की कुहू कुहू हो या ची ची करती चिड़िया की आवाज, झरझर बहते झरनों से आती पानी की आवाज या फिर रात के सन्नाटे में मंद मंद बहती हवा की ध्वनि, सब कुछ संगीत ही तो है। हालांकि संगीत का तकनीक के साथ तालमेल बिठाने के लिए कई वाद्य यंत्र तैयार किए गए हैं, पर आजकल रोजमर्रा की वस्तुओं से भी म्यूजिक बनाने का चलन काफी बढ़ गया है। कांच की बोतलें, स्टील के बर्तन, कंघी, यहाँ तक कि कागज के टुकड़ों से भी संगीत तैयार किया जा रहा है। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत में इस तरह के नए नए प्रयोग करने के लिए एक संगीतकार बेहद मशहूर थे और वो थे पंचम दा, यानी संगीत जगत के दिग्गज संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम आर डी बर्मन भी कहते हैं। आज है इन महान गायक और संगीतकार का जन्मदिन, तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आर डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध इस गीत के साथ, जिसे गाया भी आर डी बर्मन ने ही है, साथ ही आशा भोसले की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, और फिल्म का नाम है कारवां।

श्रोताओं, आर डी बर्मन ने संगीत के क्षेत्र में साल 1960 के दशक से 1990 के दशक तक 300 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया और संगीत को एक अलग और हट के पहचान दी। इन्होंने म्यूजिक को मॉडर्नाइज किया। इन्हें अपने पिता महान संगीतकार सचिन देव बर्मन से ही संगीत तैयार करने का गुण जैसे धरोहर में मिला हो। दोनों ही बेहतरीन और एक से बढ़कर एक संगीतकार माने जाते थे सिनेमा जगत में। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और भी होंगी पंचम दास से जुड़ी। फिलहाल वक्त है इनके संगीत से सजे इस गीत का, जिसे लिया है फिल्म अमर प्रेम से। गायक किशोर कुमार हैं और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप लुत्फ उठा रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का, और आज का कार्यक्रम समर्पित है संगीतकार आर डी बर्मन को। श्रोताओं, आर डी बर्मन के संगीत में वर्सिटैलिटी देखी जा सकती है। हर मूड के गीतों के लिए इनके पास संगीत है। खुशी के गीत हों, दुख भरे गीत या फिर डिस्को और कैबरे वाले गाने, हर तरह का संगीत इनके पास मौजूद था। आर डी बर्मन अपने समय के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में से एक थे। इन्होंने अपने गीतों में अरेबिक, जैज और रॉक धुनों को शामिल किया। इतना ही नहीं, इन्होंने बंगाली लोक संगीत को वेस्टर्न बीट्स के साथ इस तरह मिलाया कि श्रोता उनके गीतों के दीवाने हो गए। अपने करियर की शुरुआत यूं तो इन्होंने 1961 में आई फिल्म छोटे नवाब से की, लेकिन असल सफलता इन्हें मिली

1966 में बनी तीसरी मंजिल फिल्म के साथ। इसी फिल्म का लाजवाब गीत हम आपको अब सुनवाते हैं। आर डी बर्मन के संगीत से सजा ये गीत है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का युगल स्वर है और रचना है मजरू सुल्तानपुरी की।

सदाबहार नगमे में आज आपको सुनवाए जा रहे हैं आरडी बर्मन के संगीतबद्ध गीत। श्रोताओं, पंचमदा ये नाम आरडी बर्मन को किसने दिया और क्यों, आज आपको हम ये भी बताना चाहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ था तो अभिनेता अशोक कुमार उन्हें देखने पहुंचे। बच्चे के पिता एसडी बर्मन तो महान संगीतकार और गायक थे ही, अशोक कुमार ने बच्चे का रोना सुनकर गौर किया कि बच्चा सरगम के पांचवें सुर पा को बार बार दोहरा रहा है और लगता है कि वो सुर में रो रहा है। इस ध्वनि से प्रभावित होकर अशोक कुमार ने उन्हें पंचम नाम दे दिया और ये नन्हा सा बच्चा युवा होकर देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में गिना गया और इन्हें सभी प्यार से पंचम दा कहकर पुकारने लगे। अगला गीत फिल्म सनम तेरी कसम से लिया गया है, जिसके लिए आर डी बर्मन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। आवाजें आर डी बर्मन और आशा भोसले की ही हैं। गुलशन बावरा का लिखा ये गीत है।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए यादों की बारात फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, आर डी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी के बोल।

0: सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन

यादों की बारात फिल्म के इस नगमे के साथ आर डी बर्मन की यादों का ये सिलसिला अब यहीं हम रोक रहे हैं, क्योंकि समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। ये गीत आपने सुना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में। आज के सभी गीत समर्पित थे राहुल देव बर्मन को। कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 8 बजने को हैं समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली

0: उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है, लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी। उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर

0: लैंड के बेलफास्ट में पहले टी20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और केवो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day.

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे भारत में चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं। उन्हीं चिकित्सा पद्धतियों में योग और ध्यान को भी शामिल किया गया है, जिसमें लोगों को मेडिटेशन, ध्यान और योग प्राणायाम के जरिए स्वस्थ करने का एक मार्ग दिखाया जाता है। श्रोताओं, यदि हम योग और ध्यान से जुड़ेंगे तो बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि योग और ध्यान जो है हमारे चित्त, हमारे शरीर को आत्मीय रूप से स्वस्थ बनाता है। फिर हम उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक होंगी। तो श्रोताओं, योग और ध्यान का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योग और ध्यान कैसे करें, इस विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो मृत्युंजय जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी आकाशवाणी टीम को।
0: जी जी, तो मृत्युंजय जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग और ध्यान क्या है।
1: बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि आमतौर पे जैसे कि हम इसको अगर योग की फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट में बोले तो हम लोग बोलते हैं कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधा है। लेकिन चूंकि मैं वैज्ञानिक और चिकित्सीय पक्ष से अगर उसको मैं व्याख्या करने की कोशिश करूं, तो यह एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप अपने बॉडी को, अपने ब्रेथ को और अपने माइंड को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर पे, एक सिंक्रोनाइज मैनर पर आप कार्य कर सकते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेशन जब होता है बॉडी, ब्रेथ और माइंड का एक सिंक्रोनाइज वे पर, और यही कोऑर्डिनेशन, यही यूनियन को हम योग कह सकते हैं
0: जी।
1: ध्यान भी आज के तरह एक योग की ही विधा है। अगर हम योग के बारे में बात करते हैं तो पतंजलि जी का नाम लेना, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले योग को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उनको दिखाया। और ध्यान भी पतंजलि के जो अष्टांगिक योग का एक पार्ट है। ध्यान में हम बेसिकली आज के तारीख में लगभग दो चीजों में बड़ा ही उनमें दिग्भ्रामक होता है कि ध्यान क्या है। ध्यान को लोग बाग धारणा समझते, कंसंट्रेशन समझते हैं। ध्यान एक तरह से एकाग्रता नहीं होता है। जब आप एफर्टलेस, बिना किसी एफर्ट के अगर आप किसी भी चीज को कंटिन्यूअस देखते जाते, ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो वो प्रकार को ध्यान कहलाता है। तो ध्यान देखा जाए तो मन का विश्राम है एक प्रकार से। जब मन आपका विश्रांति अवस्था में पहुंच जाता है, उसी को हम ध्यानस्थ अवस्था कहते हैं। तो मन का विश्राम ही ध्यान है, कह सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, हम योग और ध्यान के बारे में थोड़ा सा आगे और चले, उससे पहले हम आपसे एक जो है मूलभूत सवाल जानना चाहेंगे कि आज हर व्यक्ति बीमार है और किसी को शुगर, बीपी, हड्डियों की बीमारी और कई तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इसका जो है एक क्या कारण हो सकता है?
1: आपका ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसका मुख्य जो कारण जो है, प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का, जैसे आप जान रहे हैं कि युग है और इतना कंपटीशन है, तो जो शरीर जो होता है उसकी भी एक क्षमता होती है। तो कई बार आपका जो शरीर है इस कॉम्पिटेटिव युग के साथ में फाइट नहीं कर पाता, कोपअप नहीं कर पाता है। और धीरे धीरे यही कोपअप नहीं करने की वजह से उसको एक तनाव शरीर के भीतर आना शुरू हो जाता है। और ये तनाव भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक मुख्य समस्त बीमारियों का कारण है, जिसको हम लोग मेडिकल साइंस में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं
0: जी।
1: जिसमें आप जैसे बताया डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, आर्थराइटिस है, ये सारी बीमारियां एक तरह से साइकोसोमेटिक डिसीज की कैटेगरी में आती हैं। इनका जो मुख्य कारण मन में होने वाला दबाव है, तनाव है
0: जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं योग और ध्यान की, तो सबसे पहले हम बात करें योग की, क्योंकि 21 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाना जाता है। तो योग कि कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से योग जो है हमारे लिए लाभकारी होते हैं?
1: देखिए, अगर हम आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर आप मॉडर्न लाइफ स्टाइल को देखिए तो आज का जो आधुनिक मनुष्य जो हो गया है, मोबाइल का डेस्कटॉप का बहुत आदि हो गया।

0: और उसके वजह से एक नई बीमारी जो उत्पन्न हो गई समाज में, जो हो सकता है आने वाले समय में लोग बात उसके बारे में जरूर बात करेंगे, कंप्यूटर डिस्क सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम आ रहे हैं कंप्यूटर को यूज करने से, लगातार स्क्रीन देखने से आपका जो हेड है वो थोड़ा सा आपके जो गर्दन जो है उससे आगे आ गया है। तो इस समस्या के वजह से भी एक आधुनिक जगत में एक समस्या आ रही है। और इसके लिए जैसे आपने पूछा कि किस तरह के योगा अभ्यास करना से मदद मिलेगा, तो मेरा ये कहना है चूंकि ये हम एक कैटेगरी में बांटेंगे तो इसको फॉरवर्ड हेड हो जाता है, बॉडी जो आपका है उसमें जो आपको गर्दन जो होता है सिर थोड़ा सामने की ओर जाता है, तो आप पीछे झुक करके जितने भी अभ्यास हैं जिसमें बैक बेंडिंग जो आसना है वो आप करेंगे तो निश्चित ही रूप से जो आधुनिक युग में जो समस्या आ रही है उस समस्याओं को रिवर्स करने में एक लाभकारी हथियार के रूप में सिद्ध होगा। वो उसमें उष्ट्रासन आप बोल सकते हैं, उष्ट्रासन का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन,
1: जी
0: सेतुबंधासन का अभ्यास करना चाहिए, है ना। योग के तो प्रकार जो मुख्य रूप से जो कर्मयोग है जिसमें व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, दूसरा है ध्यान योग जिसकी आप बात कर रहे थे, जो तीसरा जो मुख्य प्रकार है भक्ति योग जिसमें आप सरेंडर हो जाते हैं अंतिम, जिसे आप भगवान कहते हैं परमात्मा कहते हैं और उनके सानिध्य को सबसे समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, तो भक्ति योग की कैटेगरी में आता है। तो मुख्य रूप से योग के तीन प्रकार होते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, है ना। इस तरह से
1: जी
0: प्राणायाम जो देखा जाए तो ये जो पतंजलि जी ने जो अष्टांगिक जो मार्ग बताया है जिसमें उन्हें यम और नियम से स्टार्ट किया है कि यम नियम जो है, फिर उसके बाद में पहले यम और नियम को साधना है, फिर आसन करना है, आसन के बाद में प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है प्राणायाम।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई योग की। तो यदि हम जानना चाहें कि जब हम योग करते हैं तो योग करने का क्या तरीका हो सकता है, हमें कैसी जगह बैठना चाहिए और कितना समय देना चाहिए?
0: देखिए प्रारंभ में तो समय का महत्व बहुत इम्पोर्टेंस होता है कि अगर यदि आप दिन भर में 24 घंटे में यदि आप एक ही समय का चुनाव करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और सुबह प्रातः काल का समय सबसे बेस्ट होता है कि आप प्रातः काल अपने दैनिक जो भी क्रियाएं हैं उससे निवृत्त होकर के प्रातः काल आप उसमें बैठें, साधना करें अपना, तो बहुत बेस्ट होगा। और यदि इसके अलावा यदि संध्या काल में भी आप यदि कर पाए तो और भी अच्छा है कि संध्या काल भी थोड़ा समय निकाल करके करें। कम से कम मैं बोलता हूँ कि आपके 20 से 25 मिनट का समय बेस्ट रहता है ना, जिसमें आप थोड़ा सा आसन कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा बहुत ध्यान कर लीजिए, उनका एक कम्बो पैक बना करके आप कीजिए तो निश्चित ही ये लाभकारी सिद्ध होगा। और ऐसे बहुत सारे रिसर्च में भी अभी आ चुका है, तो इसमें कोई भी दो मत नहीं है कि योग करने से निश्चित ही आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपका जीवन जीने का जो सलीका है उसमें सुधार देखा गया है। कई तरह के रिसर्च इसको प्रमाणित भी कर रहे हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं एक युवाओं से लेकर के बुजुर्ग तक, वृद्ध लोगों की, तो युवाओं के लिए और एक बुजुर्ग के लिए अलग अलग अगर हम योगों की बात करें और योग की समय की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए क्या है, मेरा इसमें एक सुझाव ये रहेगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो बुजुर्ग व्यक्तियों में उनके लिए जैसे कि जो आपके बिहार स्कूल ऑफ योगा है उनका सूक्ष्म व्यायाम का एक पूरा सीरीज है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट होगा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें प्रतिदिन अपने साथ में 20 से 25 मिनट तक, तो उनके लिए बेस्ट होगा। लेकिन जो युवा वर्ग हैं जिनको जीवन में एक गतिशीलता चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है सूर्य नमस्कार। तो प्रतिदिन अगर युवा वर्ग सूर्य नमस्कार करे तो निश्चित ही उसको उनसे बहुत फायदा होगा, उनके जीवन में गतिशीलता आएगी, एक जीवन के प्रति एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। जैसे सूर्य का नाम ही ऊर्जा है ना, हम ऊर्जा के रूप में सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य का नमस्कार प्रतिदिन करना चाहिए, निश्चित ही युवाओं को इससे फायदा होगा। लेकिन बुजुर्ग वर्ग लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करें तो उनको फायदा होगा।
1: जी, डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम चाहते हैं कि आपकी पसंद का एक गीत हम इस कार्यक्रम में सुनें।
0: बिल्कुल, मेरे पसंद का एक गीत है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, गाना बहुत मेरे दिल के करीब है।
1: जी।

0: श्रोता डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं योग और ध्यान के बारे में। तो डॉक्टर साहब, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे योग के बारे में, आइए अब बात करते हैं ध्यान के विषय में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ध्यान क्या है और कितने प्रकार के हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, ये प्रश्न लोगों को बहुत लोग बात इसमें कंफ्यूज रहते हैं थोड़ा सा, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी देना चाहूंगा। विभिन्न जो एक जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान मन का विश्राम है, मन का व्यायाम है, ये ध्यान है। लेकिन जैसे आपका जो दूसरा प्रश्न कि जो ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, तो इस पर विभिन्न रिसर्च होने के पश्चात में ये देखा गया कि ध्यान के मुख्य रूप से चार प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस अटेंशन मेडिटेशन, जिसको आप कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन की कैटेगरी में कहते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए आप किसी भी अपने श्वास पर कंटिन्यूअस ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, श्वास आ रही है जा रही है, या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो इस तरह की जो ध्यान के जो प्रकार है वो कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन में आते हैं। और दूसरा जो प्रकार है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। जो ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन है उसको हम लोग सहज ध्यान भी कहते हैं, जिसमें आप विदाउट जजमेंटल आप चीजों को सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो कहलाता है, इस तरह के जो ध्यान है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। और जो तीसरा जो ध्यान होता है वह कहलाता है करुणा ध्यान, जिसमें हार्टफुलनेस मेडिटेशन आता है, करुणा ध्यान रहता है, प्रश्न है। ये जो हायर लेवल के जो मेडिटेशन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे भीतर की जो नकारात्मक जो भावन है, जो इमोशंस है, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं और पॉजिटिव

0: टू इमोशंस लाते हैं, कल्टीवेट करते हैं पॉजिटिव इमोशंस को, जैसे जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, क्षमा हो गया, तो इस तरह के पॉजिटिव इमोशंस को कल्टीवेट करते हैं। तो इस तरह का जो ध्यान का जो प्रकार है इसको हम लोग करुणा ध्यान कहते हैं। तो इस तरह से कुल आप मोटे मोटे रूप से तीन प्रकार आप बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैज्ञानिकों ने भी इन प्रकारों को प्रमाणित किया है, क्योंकि तीनों ही प्रकार के ध्यान में आपके जो न्यूरोनल सर्किट्स है, जो ब्रेन की जो गतिविधियां अलग अलग होती हैं, तीनों के ही जो फल भी अलग अलग होते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर भी ध्यान को तीन भागों में बांटा गया है।
1: तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें युवाओं के लिए, जो अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हो सकते हैं, कॉलेज के बच्चे हो सकते हैं, और उसके बाद रोजगार के लिए जो स्ट्रगल कर रहे बच्चे होते, तो उनके लिए ध्यान का कितना महत्व है?
0: बिल्कुल सही है कि देखिए क्या है कि ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखता है, और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी सूचित करना चाहूंगा कि युवाओं को किस तरह का ध्यान देना चाहिए, मतलब मेडिटेशन कौन से प्रकार का करना चाहिए। तो उनके लिए सबसे जो बेस्ट है वो है फोकस अटेंशन मेडिटेशन, जिसको हम लोग जैसे बात की कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन की जो कैटेगरी है, इसके पीछे का रहस्य क्या है कि हम इस पे देखें कि जो डिफरेंट जो अन्वेषण हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उसमें देखा गया कि जब आप फंक्शनल MRI मशीन होता है जिसमें आपके ब्रेन की गतिविधियों को, फंक्शन को मेजर किया जाता है, तो उस गतिविधियों के माध्यम से यह निष्कर्ष निकला कि जब व्यक्ति किसी भी चीज को फोकस रहता है, श्वासों पे ध्यान दे, तो ब्रेन के एक हिस्सा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और उसका भी डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो एरिया सक्रिय हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि यह जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जब सक्रिय होता है तो व्यक्ति की वर्किंग मेमोरी, जैसे कोई भी काम कर रहा है तो उस समय उसकी जो तत्कालिक मेमोरी जो होती है वो उस काम को हेल्प करना चाहिए। तो वर्किंग मेमोरी है, अटेंशन है, उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, ये सारे जितने भी जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये डार्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। तो ऐसा देखा गया कि ये पार्ट जितना ज्यादा एक्टिव होगा आपका
1: जी,
0: तो उतना ज्यादा आप इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। तो युवाओं को बहुत जरूरी है कि उनके अंदर अटेंशन होना चाहिए, काम के प्रति वर्किंग मेमोरी स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये देखा गया है कि कंसंट्रेटिव वैरायटी ऑफ मेडिटेशन करने पर उसकी एक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि प्रतिदिन युवाओं को कम से कम 10 से 15 मिनट अपने श्वासों पर ध्यान देना चाहिए या मंत्र का जाप करना चाहिए, तो निश्चित ही इससे उनकी जो जो पर्टिकुलर जो एरिया है जिसको हम लोग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो एक प्रकार से उसको बुद्धि भी बोल सकते हैं अगर आप उसको फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में देखें, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, बुद्धि उनकी प्रगाढ़ होती जाती है। और ये सारी चीज में रिसर्च पेज बता रहा हूँ आपको, सारे चीज अनुसंधान पे ऑलरेडी इसे प्रूव हो चुके हैं कि ध्यान करने से ब्रेन में अल्फा रिदम्स आते हैं, ठीक है, और डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर जो पॉजिटिव न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनका स्राव होने लगता है, तो इस तरह की गतिविधियां होती है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: एक और गीत है जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये भी मेरे बहुत ही दिल के करीब संगीत है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है।
1: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल हम देखते हैं कि चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो, उनके अंदर जो है एक अजीब सा तनाव देखने को मिलता है। वो तो उनका ध्यान जो है अभी वर्तमान और आधुनिकता की ओर रहता है, जिससे वो तनावग्रस्त रहते हैं। अधिकतर हम देखें, बस जब बात करते हैं हम विद्यार्थियों की, तो योग और ध्यान उनकी कैसे मदद कर सकता है?
1: बिल्कुल, योग और ध्यान तो निश्चित ही मदद करेंगे, लेकिन मैं उनके लिए एक सिंपल सा एक बोलते नहीं कि निमोनिक्स, निमोनिक्स जिसको बोलते हैं, तो एक निमोनिक्स देना चाहूंगा। 3T फंडा, 3T। तो ये 3T फंडा कहने का मतलब ये होता है कि एक टी होता है थॉट्स मैनेजमेंट, एक टी होता है टंग मैनेजमेंट, एक टी होता है टाइम मैनेजमेंट।
0: जी
1: तो यदि आज का युवा वर्ग थॉट्स को मैनेज कर पाए, तो थॉट्स का जो मैनेजमेंट है वो आपके ध्यान के द्वारा हो पाएगा, टंग का मैनेजमेंट भी आपका ध्यान के माध्यम से हो पाएगा,
0: जी
1: टाइम का मैनेजमेंट भी आपका ध्यान के माध्यम से हो पाएगा। क्योंकि तो आप ये ध्यान करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको अपनी ऊर्जा, ताकि भाई काम तो बहुत सारे हैं, आज का युवा वर्ग भटक रहा है क्योंकि उसका भटकाव है वो डिस्ट्रेक्टेड माइंड के द्वारा, उसका माइंड उसको बहुत डिस्ट्रेक्ट करता रहता है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं। तो यदि वो फोकस रहे और ध्यान करते रहे जीवन में प्रतिदिन, तो निश्चित ही जब वो फोकस माइंड में रहेगा तो भटकाव जो उसको भटकाते हैं उससे वो कम दिग्भ्रमित होगा वो,
0: जी
1: और अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा पाएगा वो। मेरा यही कहना है कि भाई उनको बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए, और ऊर्जा कहाँ पर कैसे लगाना है, कितनी लगाना है, ताकि ऊर्जा तो आपको निश्चित ही लगेगा हर चीजों में। यदि आप गलत डायरेक्शन में एनर्जी लगा देंगे तो थक जाएंगे बहुत जल्दी, जहां लगाना वहां आप नहीं लगा पाएंगे, है
0: जी।
1: ना।
0: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में
1: बिल्कुल
0: भी कुछ महिलाएं होती हैं जो गृहस्थ महिलाएं होती हैं, कुछ महिलाएं कामकाजी होती हैं, और कुछ महिलाएं गृहस्थ और कामकाजी दोनों होती हैं। और जब हम योग और आसन और प्राणायाम और ध्यान की बात करते हैं, तो इसका जो लाभ हमारी महिला कैसे ले सकती हैं?
1: उनको भी प्रतिदिन कम से कम अपने जीवन में कुछ आसन का अभ्यास, जैसे कि मैंने आपको बताया उष्ट्रासन बहुत बढ़िया आसन है, विपरीत करनी दूसरा आसन है, आपका जो तीसरा सेतुबंध आसन है, तो इस 3 तरह के आसनों को अपने जीवन में वो शामिल करें, कुछ समय लगाएं और थोड़ा बहुत समय अपना प्राणायाम के लिए लगाएं, लंबी गहरी सांसें लें, डायाफ्रेमेटिक ब्रीथिंग करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, और लास्ट में थोड़ा बहुत ध्यान का अभ्यास करें। तो निश्चित ही इस तरह के अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करने से उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी, हर तरह से वो काम एंड क्वाइट रहेंगे और परिवार को भी अच्छे संभाल पाएंगे, अपने जो भी चीजों को भी टाइम प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे, तो निश्चित ही फायदा होगा इस चीज
0: जी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में चलें,

0: उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम ध्यान और योग की बात करते हैं तो इसमें हमारा खान पान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो योग और ध्यान से जुड़े खान पान की आदतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं बिल्कुल, जैसे हम खान पान के विषय में हम कहते हैं कि जो सात्विक भोजन है, तामसिक भोजन है, राजसिक भोजन है, तीन तरह के भोजन को हम आयुर्वेद के हिसाब से बांटते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, तो जो आप योग अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। यदि आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, राजसिक कर रहे हैं, तो फायदा तो होगा, लेकिन फायदा होने की जो प्रायिकता कम हो जाएगी आपकी। लेकिन यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करके आप योग अभ्यास कर रहे हैं, तो उसकी फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो निश्चित रूप से ही मेरा कहना है कि सात्विक जो भोजन होते हैं, हल्के भोजन होते हैं, आप वो करें अपने जीवन में, निश्चित ही उस सब चीजों से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।

0: आप योग अभ्यास कर रहे हो तो उसकी फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: जी
0: तो निश्चित रूप से ही मेरा कहना है कि सात्विक जो भोजन होते हैं, हल्के भोजन होते हैं, आप वो करें अपने जीवन में, निश्चित ही उस सब चीजों से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा।
1: जी जी बहुत अच्छी और लाभकारी जानकारी अभी डॉक्टर साहब आपने दी है। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय राठौर जी से, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय योगा एनाटॉमी एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर मृत्युंजय जी, कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं एक बार पुनः आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, आकाशवाणी ने आज मुझे इस कार्यक्रम के बुलाया और उन्होंने मुझे इस चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की, इसलिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आकाशवाणी रायपुर का, धन्यवाद।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे योग और ध्यान का महत्व रोगों से बचने विषय पर। डॉक्टर मृत्युंजन राठौर से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे, भेंट करता थे रमाशंकर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।

आकाशवाणी रायपुर से अभी आप सुन रहे थे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को है। आइए आकाशवाणी रायपुर से अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम बातों बातों में।

0: 9 बजे हैं बातों बातों में। इसमें सुनिए 1 जुलाई से लागू होने वाले वीबीजी राम जी योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ल की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, आगामी 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ सहित देश भर में विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना यानी वीबीजी राम जी लागू होने जा रही है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। श्रोताओं, इस योजना के हर पहलू पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा। उप मुख्यमंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: करते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, जिसे VBG राम जी के नाम से ज्यादा जाना जाता है, यह योजना 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। इस योजना की विशेषताओं के बारे में बताएं।
1: सिर्फ रोजगार पर आधारित ना होकर रोजगार के साथ साथ आजीविका पर आधारित होना, आजीविका के लिए आवश्यक कौशल उन्नयन भी इसमें समाहित होना, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ रोजगार अर्थात एक दिन कोई व्यक्ति आए और काम करके अपनी दिहाड़ी पक्का कर वापस चला जाए, यह कहीं गया नहीं है, यह प्रावधान अभी भी है। इसके साथ ही साथ उसका कौशल उन्नयन के लिए हम काम कर सकते हैं क्या, और कौशल उन्नयन के लिए आवश्यक जो प्रशिक्षण है उस पर काम कर सकते हैं क्या, साथ ही साथ गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सारे ही विषयों को समाहित करके गांव के समग्र विकास के लिए जो योजना लाई गई है वही VBG राम जी है। निसंदेह इसका लक्ष्य 2047 तक, जब समूचा देश निसंदेह दुनिया में आगे बढ़कर अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होगा, तब हमारे गांव भी उसी दिशा में, उसी तर्ज पर, उसी आधार पर आगे रहें, इसलिए हम इस योजना के लिए काम करते हैं। इनकी विशेषताओं के संदर्भ में आप कहें तो इन मूल विशेषताओं से अतिरिक्त कुछ और भी विशेषताएं हैं। जैसे इसमें हम 125 दिन का समय दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर ही लोगों को रोजगार देने की गारंटी दी गई है। उस समय पहले 15 दिन हुआ करते थे।
0: जी
1: इसमें भुगतान के लिए भी व्यवस्थाएं वैसे ही की गई हैं। काम ढंग से हो इसके लिए अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इसको मॉनिटरिंग करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी बनाए जा रहे हैं। तो इस लोकल बॉडीज जिस पर काम करेंगी, तो एक जो अपेक्स बॉडी होगी वो उस पर डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी भी रख सकती है कि काम जो हो रहे हैं वो वस्तुतः होने चाहिए। कालांतर में धीरे धीरे हो क्या गया था कि मनरेगा के माध्यम से होने वाले कामों में हम देखते थे कि गुणवत्ता गौण हो गई थी और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान नहीं था। इसलिए इस बात की आवश्यकता हो गई थी कि अगर पैसे गांव के विकास और गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लग रहे हों तो उसका परिणाम निकलना चाहिए। विषय को परिणाम उत्पादक बनाने के लिए विशेष रूप से मनरेगा से आगे बढ़कर VBG राम जी, यानी कि मनरेगा गांधी जी के नाम पर था और गांधी जी भगवान राम को मानते थे, तो गांधी जी के साथ अब हम गांधी जी के विचारों पर आगे बढ़े हैं, गांधी जी की मान्यताओं पर आगे बढ़े हैं, ये VBG राम जी है।
0: जी बिल्कुल, इसी को ही हम थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि यह योजना मनरेगा का स्थान लेगी, मनरेगा से ये किस तरह से बेहतर है VBG राम जी योजना, और इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी नए रूप में?
1: मनरेगा में धीरे धीरे गुणवत्ता गौण हो गई थी, कार्यों की गुणवत्ता नहीं हो पाती थी और एक परिपाटी सी बन गई थी कि उसमें क्या करना है। आज हम और अधिक इसको स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के थ्रू, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेस्ड मॉनिटरिंग के थ्रू, अनेक ऐसे डिजिटल चेक पॉइंट्स इस पर बन रहे हैं जिसको क्रॉस करना बिना गुणवत्ता के संभव नहीं हो पाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम इसके अपेक्स बॉडी में एक डैशबोर्ड की कल्पना भी कर रहे हैं जिसके माध्यम से किए हुए कामों की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस तरह से निसंदेह गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होगा,
0: जी
1: मिट्टी आधारित ही काम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम गांव में होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कन्वर्जेंस इसमें बहुत सरल कर दिया गया है, तो अन्य मदों से इस मद को मिला करके गांव के डेवलपमेंटल काम के लिए इसका उपयोग किया जाना, यह भी सरल हो गया है। इसमें इस बात को भी ध्यान रखा गया है कि सिर्फ आजीविका ही नहीं रोजगार पर भी इस पर फोकस है, इसलिए VBG राम जी अधिक मूल्यवान मुझे लगता है और अधिक प्रगतिशील विचारों के साथ है।
0: जी आपने रोजगार की बात की, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई बार लोग वहां से पलायन करते हैं रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर, किस तरह से VBG राम जी उस पलायन को रोकने में सहायक साबित होगी, और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उससे उनको इस योजना से कितना लाभ पहुंचेगा, रोजगार के लिए कितनी बड़ी भूमिका ये निभा सकती है ग्रामीण क्षेत्रों में?
1: एक बात मैं व्यक्तिगत तौर पर और पंचायत विभाग के मंत्री होने के नाते भी इस बात को कहना चाहता हूं आपसे कि हमारे यहाँ से जो श्रमवीर हैं
0: जी
1: वो कहीं जाकर के निर्माण कार्य करते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर इसको गलत नहीं मानता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ के ताकत पर पुणे, बंबई, नागपुर, दिल्ली, लखनऊ ऐसे अनेक शहर आबाद हुए हैं, बड़े हैं, उन्नयन हुआ है उन शहरों का, इसमें छत्तीसगढ़ की ताकत लगी है। ये एक अलग मसला है आज के समय में। इसके साथ साथ एक अलग मसला जो गांव में लोग हैं, उन गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ उनको दैनिक रोजगार

0: भी मुहैया हो जाए, इसके लिए पुराने योजना से
1: जी
0: एक कदम आगे बढ़कर वीबीजीराम जी उपयोग आने वाला है। इसमें भाव ठीक हुआ है, पुरानी योजना में गुणवत्ता गौण हुई थी और उस पर ये हमेशा सोचा जाता था कि ठीक है नरेगा है तो ऐसे कर लिया जाएगा। अब इसको स्पष्टता हो गई है, इसमें राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बढ़ाने के साथ साथ ये गांव में इस बात के इस भाव के साथ काम करना प्रारंभ हो गया है, हो जाएगा कि हमारे गांव के उन्नति का आधार कोई है तो ये इसी योजना के माध्यम से आने वाला है। तो अच्छे भावनाओं के साथ जब काम होगा तो रोजगार भी उपलब्ध होगा लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा।
1: जी अब हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस योजना के नाम की शुरुआत में ही दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, विकसित भारत। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यह संकल्प है कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है, यह जो योजना है वीबीजी राम जी, वो इस लक्ष्य को पाने में किस तरह से भूमिका निभाएगी? क्योंकि भारत जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, आज भी एक बड़ी संख्या वहां पर निवास करती है। तो आपने कहा कि मनरेगा में वो गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जाता था, इसमें किस तरह के काम सृजित किए जाएंगे, किस तरह के काम होंगे जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका निभाएंगे और फिर वो ग्रामीण क्षेत्र विकसित भारत को बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे?
0: 3,300 करोड़ का प्रावधान केंद्र ने किया है और उसके संगत बजट छत्तीसगढ़ सरकार भी आगे बढ़ा लेगी, ऐसा आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दे दिया है। इस तरह से मैं कहता हूं कि एक बड़ी राशि हमारे पंचायतों के विकास कार्यों के लिए हमको उपलब्ध हो जाएगी। इसमें 12 मासी सड़कों का भी उल्लेख है, इसमें आप बिल्डिंग भी बना सकते हैं स्कूल के, इसमें आप किचन शेड बना सकते हैं, गांव के लिए आवश्यक जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए है उन सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें अनुमेय किया गया है
1: जी।
0: तो गांव की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता इसमें पूर्ण कर सकते हैं, रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस भी कर सकते हैं। तो ऐसी एक योजना जिसके माध्यम से गांव के इन सारे ही चीजों को किया जा सके, ये वीबीजी राम जी है। ये निसंदेह विकसित भारत की संकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए ये योजना आई है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। पहली योजना प्रारंभ में बिल्कुल ठीक थी, परंतु कालांतर में उसके प्रति जो भाव आ गया था उसमें परेशानी हुई थी।
1: एक बात और है उपमुख्यमंत्री जी, योजनाएं बनती हैं बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि धरातल में क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और वो कमी होती है निगरानी की वजह से, कि मॉनिटरिंग की कमी रहती है। इस योजना के वैसे आपने बताया कि डैशबोर्ड इसमें बनेगा, निगरानी, इसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं कि किस तरह से प्रशासनिक कसावट लाई जाएगी निगरानी के संदर्भ में, ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से बताएं।
0: प्रत्येक पंचायत में का एक QR कोड होगा
1: जी।
0: आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो उस पर्टिकुलर उस पंचायत के माध्यम में वीबीजी राम जी के माध्यम से जो भी कुछ होने वाला है वो डिटेल हाथ में आ जाएगा। हर एक आदमी के हाथ में पूरी जानकारी होगी, किसी को मैंने सूचना का अधिकार का आवेदन लगा करके घूमने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सबके सामने हो जाएगी। इसमें हमारे सारे ही 11,600 से अधिक पंचायतों में एक साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए पर्याप्त सूचना सबको पहुंच जाए, इस संदर्भ में ग्राम सभाएं करना और दूसरे ही माध्यमों से आगे बढ़ाना इसको कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग, इसकी चेकिंग होगी, लेकिन जब हम पाम्फलेट, बैनर, पोस्टर, ग्राम सभाओं के माध्यम से विषय को आगे बढ़ाए हैं तो जनता के मन में भी और जनता को भी ये स्पष्ट हुआ है कि इसके माध्यम से क्या क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। जब जनता की नजर होती है कहीं पर तो फिर वो पारखी नजर सब कुछ स्पष्ट कर लेती है, और जनता की नजर इस पर रहे, हर एक काम पर रहे, हर एक विषय पर रहे, इसी के लिए बहुत प्रचार इस विषय का किया गया है। अभी विगत 24 तारीख को पूरे ही प्रदेश में एक साथ ग्राम सभा का आयोजन करके ग्राम सभा के बीच में इस विषय को विशेष रूप से, पहला विषय था वीबीजी राम जी, उस ग्राम सभा का पहला विषय था, उस पहले विषय के साथ इस सारा जनता के बीच में रखा गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी, अनेक जो नरेगा के एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉयज को इसमें समाहित करते हुए उनके माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। इन सभी के से इतर जनता की निगाहों से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए काम किया गया है।
1: बिल्कुल, वैसे तो अभी आपने बताया कि ग्राम सभाओं के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन योजना को सफल बनाने के लिए जनता को उसके बारे

0: में जानकारी होना बहुत जरूरी है और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमने सुना है कि एक रथ को भी रवाना किए जा रहे हैं गांव गांव में, जो लोगों को जागरूक करेंगे इसके बारे में, इस योजनाओं के विशेषताओं के बारे में बताएंगे, किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं जनता को जागरूक करने के लिए।
1: रथ अनेक निकाले गए हैं
0: जी
1: जो इसकी पठनीय सामग्रियों को लेकर आगे बढ़ता है। कोई एक्सपर्ट भी उसमें होता है, गांव वाले उसको पूछ सकते हैं उस बात को। हम इसके लिए एक चैटबॉट बना रहे हैं, सीधा गांव वाले उसमें बातचीत कर करके वीबीजी राम जी के बारे में सारी चीजें समझ लेंगे। एआई बेस्ड चैटबॉट होगा। इसके साथ ही साथ क्यूआर कोड का मैंने विषय आपसे बताया, गांव में जो भी काम चलेंगे क्यूआर कोड के माध्यम से उसको जाना जा सकता है। हर एक गांव का एक स्पेसिफिक क्यूआर कोड इसके लिए बनाया गया है। साथ ही साथ समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आने वाले समय में 1 तारीख के बाद जब ये हमारे प्रदेश में पूर्णतः लागू होगा, मैं अनेक ऑनलाइन सेशंस इसके बारे में करूंगा। अनेक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इसमें जोड़ा गया है जिनके माध्यम से भी लोगों तक ये चीज पहुंचे, पंचायतों का ये विषय पहुंचे, यह भी किया गया है। पंचायतों के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनकी समझ बड़ी पहुंच पंचायतों के लिए है, उनको भी आग्रह किया गया है ये करेंगे। मैं स्वयं ही सभी संभागों तक पहुंचकर वहां पर जनप्रतिनिधियों से मिलकर इस विषय को रखूंगा। इस तरीके से मैं सोचता हूं कि ये विषय शीघ्र ही गांव गांव तक पहुंच जाएगा और गांव गांव तक बीबीजी राम जी की महत्ता को समझ करके लोग निसंदेह अपने गांव की उन्नति के लिए काम करेंगे। इसकी मॉनिटरिंग काम की ठीक हो, इसके लिए भी ध्यान रखेंगे।
0: उपमुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम के अंत में हम चाहते हैं इस योजना को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं, क्योंकि मनरेगा के स्थान पर जब इसको लागू किया गया कुछ तो भ्रांतियां हैं, और कुछ भ्रांतियां कुछ तत्वों द्वारा जानबूझकर भी फैलाई जाने की कोशिश की गई है। तो क्योंकि बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुन रहे हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, बीबीजी राम जी को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से?
1: मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, जैसे भारत देश हमारा है और भारत देश के अंदर हमारा छत्तीसगढ़ है, मतलब एक सबसेट है, एक बड़े सेट के अंदर एक सबसेट है। ऐसा ही वीबीजी राम जी है, उसमें नरेगा का कोई छूटा नहीं है, नरेगा पूर्ण रूप से इसमें है, उसके साथ साथ कुछ अन्य चीजों को जोड़ा गया है। तो नरेगा के माध्यम से जो कुछ हो सकता था वह इसमें हो ही सकता है, साथ ही साथ कुछ अन्य विषयों को भी इसमें जोड़ा गया है। तो अगर एक्सपेंशन होता है, बड़ा कोई चीज होता है, तो उसमें डरने घबराने या परेशान होने की कोई बात किसी के मन में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपके पास उपलब्ध चीजें थी पहले, प्रावधान जो आपके पास उपलब्ध थे, वो सारे प्रावधान तो अभी भी हैं। इसके साथ साथ कुछ और प्रावधान है, तो कुछ और प्रावधान है वो आपकी भलाई के लिए है, गाँव की उन्नति के लिए है, लोगों के बीच में इस विषय को ला करके और हम अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में क्या काम कर सके उसके लिए है। मैं सोचता हूं कि घबराने परेशान होने वाला कोई विषय ही नहीं है, और जो कुछ जो कोशिश भी कर रहे होंगे इस दिशा में ये समझाने के लिए लोगों को कि कुछ गड़बड़ हो रहा है वाला है, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पुरानी उपलब्धता थी वो कहीं कम नहीं हुई, और कुछ कुछ चीजें उपलब्ध हो गई।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सार्थक तरीके से और सारगर्भित रूप में आपने ये जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के साथ हमारी यह बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
2: कार्यक्रम बातों बातों में आकाशवाणी रायपुर से हमने रिले किया। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9:15 हो चुके हैं। अब रिले किए जाएंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: टहलें यादों की वादियों में संग संग, दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग।
2: दिल में एक लहर सी।
0: ऐसे गाने जो चुरा लें आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल।
3: तेरा मुझसे है पहले का नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
4: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती हैं 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

यूं तो आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे, क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है।

10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं। बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुनें सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना बजा।

0: पर न जा न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी ट्यून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आरडी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आरडी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

एक और दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने यह गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूं। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बांद्रा में ड्राइव करते रहे। बांद्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये अनमोल गाना।

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉलबेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू। और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था ये।

0: आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।
1: भूल गए तुम हमको? याद नहीं क्या तुमको? अरे रे रे रे रे रे। कल मिले थे हम तुम, आज फिर मिलना था।
0: जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है, ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

0: पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही
1: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:55 होने को हैं, आइए रायपुर केंद्र से सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्य

सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में सदस्य के रूप में आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एमके राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह को शामिल किया गया है। यह समिति छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करेगी। इसके अलावा विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण संबंधी विषयों पर यूसीसी के लिए सुझाव देगी।

0: तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण संबंधी विषयों पर यूसीसी के लिए सुझाव देगी। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांवों में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह बात उन्होंने कल कांकेर में नक्सल परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। श्री शर्मा ने इस मौके पर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। अपने कांकेर प्रवास के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों के साथ बैठक कर नक्सल मुक्त बस्तर के विकास में समाज की भागीदारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बस्तर में शांति और विकास के लिए सामाजिक सहयोग जरूरी है। बैठक में पेसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन, आदिवासी संस्कृति और देव स्थलों के संरक्षण पर भी चर्चा हुई। श्री शर्मा ने बताया कि 197 गांव के देवस्थलों का राजस्व रिकॉर्ड में चिन्हांकन किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर पहुंचकर रेलवे परियोजनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने कहा कि रावघाट रेल परियोजनाओं का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है, शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रावघाट तक रेल संचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि रावघाट परियोजना के बाद जगदलपुर तक रेल लाइन विस्तार की प्रक्रिया भी चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद सहित रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर की ओर से आज जगदलपुर में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष, नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू होंगे। अध्यक्षता बस्तर लोकसभा क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप करेंगे। कार्यक्रम में बस्तर संभाग के वरिष्ठ पत्रकारों की सहभागिता रहेगी। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी विषय विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। वे बस्तर क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संरचना के विस्तार, सुरक्षा और विकास के समन्वित प्रयासों तथा विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में बस्तर की भूमिका पर अपने विचार साझा करेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में शामिल प्रदेश के करीब 1000 विशिष्ट जनों का दल 5 दिवसीय यात्रा के बाद रायपुर लौट आए। रायपुर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मान से विभूषित हस्तियां, कलाकारों, साहित्यकारों, संस्कृत कर्मियों, समाजसेवियों ने सहभागिता की। प्रतिभागियों ने प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन कर भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिकता संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। FM बैंड 103.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अमराई। श्रोताओं, कार्यक्रम अमराई में आज के कलाकार हैं साखन सिंह मरावी, नवलदास मानिकपुरी, अनुसुईया मानिकपुरी और साथी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं साखन सिंह मरावी और साथियों के गाए इस छत्तीसगढ़ी लोकगीत के साथ।

साखन सिंह मरावी का गाया छत्तीसगढ़ी लोक गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम अमराई का अगला गीत इन्हीं आवाजों में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: इस संदेश से पहले आपने सुना साखन सिंह मरावी और साथियों का गाया छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त श्रोता आनंद उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का, कार्यक्रम है अमराई। श्रोताओं, अब एक सूचना सुनिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किया जा सकता है। विस्तृत विवरण राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर जाकर प्राप्त किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त श्रोता आनंद उठा रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का, कार्यक्रम अमराई में। आइए अब कार्यक्रम का अगला छत्तीसगढ़ी लोकगीत आपको सुनवाते हैं नवलदास मानिकपुरी, अनुसुईया मानिकपुरी और साथियों के स्वर में।

नवलदास मानिकपुरी का गाया ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत आपने सुना। इस गीत के साथ ही छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 होने को हैं, आइए अब सुनते हैं नए फिल्मी गीत कार्यक्रम नए तराने में।

कार्यक्रम नए तराने का आगाज जाइए करते हैं ड्रीम गर्ल 2 फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है जुबीन नौटियाल ने, गीत और संगीत आरको का।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना ड्रीम गर्ल 2 फिल्म से, आवाज़ थी जुबिन नौटियाल की। कार्यक्रम का अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, आवाज़ विशाल मिश्रा की है, गीतकार इरशाद कामिल और संगीतकार हैं विशाल मिश्रा ही।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत। संगीत निर्देशन प्रीतम का है और फिल्म का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम नए तराने में इस वक्त श्रोता लुत्फ उठा रहे हैं नए गीतों का। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के ट्रैफिक अपडेट्स।
3: नमस्कार मित्रों, प्रतिदिन की तरह आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिक निगम अर्थात शहरी क्षेत्र के साथ ही गांव-गांव में भी सभी सड़कों में सभी प्रकार के वाहनों का स्वतंत्र आवागमन हो रहा है, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जिले में उपलब्ध संसाधनों, उपलब्ध बल के साथ साथ पूरे मनोवेग से यातायात का आमला आपको सुगम और सुरक्षित आवागमन व्यवस्था उपलब्ध कराने कृत संकल्प है। शासन की अवधारणा के अनुसार 24 घंटे सातों दिन यातायात का बल इस हेतु समर्पित है। फिर भी यदाकदा सड़कों में अप्रत्याशित स्थिति भी देखने को मिलती है। निश्चित रूप से लोग इससे असहज होते हैं, पीड़ित होते हैं। यदि हम चाहें ये सब ठीक हो, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन सुगम हो, सभी की यात्रा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हम सभी व्यवस्था के अनुसार चलें, यातायात नियमों के अनुसार चलें। वो कुछ इस प्रकार। किसी भी चौक में यदि आप रेड सिग्नल में खड़े हैं तो अपने बाएं तरफ, जिसे लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है, उसे छोड़कर खड़े हों, ताकि बाएं जाने वाले बिना रुके जा सके। शहरी क्षेत्र में सड़कों में व्यवस्था के लिए पीली पट्टी बनाई गई है। अपने वाहन हमेशा इस पट्टी के बाहर ही खड़ा करें। नो पार्किंग जोन में कभी भी वाहन खड़ा ना करें, इससे जाम की स्थिति नहीं होगी। सड़क के किनारे स्थित दुकानदार अनावश्यक रूप से सड़कों तक सामान फैलाकर ना रखें, ताकि सड़क पूरी पूरी स्वतंत्र रहे। ठीक इसी प्रकार सुरक्षित यात्रा के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और इस वाहन में तीन सवारी कभी न चले। मोबाइल को वाहन चलाते समय भूल जाइए, अर्थात कोई भी वाहन चलाते मोबाइल से बातें बिल्कुल न करें। अपने वाहन चलाते समय रॉन्ग साइड ओवरटेक कभी न करें, यदि आवश्यक हो तो दाहिने तरफ से आगे बढ़ें। मालवाहक वाहनों में बॉडी से बाहर निकले हालत में माल कभी भी लोड ना करें, यह घातक हो सकता है। शराब सर्वनाश की जड़ है, यह सड़क दुर्घटना का प्रमुख कारण है। अतः नशा से दूर रहें, नशाकार वाहन चलाने की गलती कभी ना करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत गदर 2 फिल्म से हमने लिया है। मिथुन, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें हैं। संगीत मिथुन का ही है और गीतकार हैं सईद कादरी।

यार या टू फिल्म का गीत आपने सुना, परंपरा टंडन की आवाज में। गीत और संगीत था मनन भारद्वाज का। कार्यक्रम नए तराने का अगला और अंतिम गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, हमने चुना है फिल्म लापता लेडीज से। श्रेया घोषाल की आवाज है, गीतकार स्वानंद किरकिरे हैं और संगीत है राम संपत का।

0: लापता लेडीज फिल्म का गीत आपने सुना श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने को हैं, आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती आप सुन रहे हैं, देश के सुरीली धड़कन विविध भारती, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में द ट्रेन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आज है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन का जन्मदिन और इसी मौके पर उनके ही संगीतबद्ध किए गीत और कुछ गीत ऐसे जिनमें उनकी आवाज भी है, ये सुनवाए जा रहे हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत में।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। शोले फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी ने लिखा। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत विविध भारती पर।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।
3: Mm-mm.

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

0: सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर और सपन चक्रवर्ती की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ Any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद

0: पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: किशोर कुमार, आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में पुकार फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। शब्द रचना गुलशन बावरा की, संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं राहुल देव बर्मन के संगीत से सजाइए गीत, जिसे गाया है आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन ने। रॉकी फिल्म के इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: रॉकी फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन और साथियों को। और इसके साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
2: साइंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत

की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई थी। ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

0: ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद आमिर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था। फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे, साल 1955।
1: झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल।
0: सन 1956 में राजा नवाथी की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा, ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये, और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक टिक टिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे।
1: रघुवर तुम को मेरी लाज, रघुवर तुम को मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है।

0: पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला।
1: जो तुम तोड़ो पिया मैं ना ही तोड़ूं रे।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

0: पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान।
1: ओ बेदर्दे क्यों तड़पाए जी राम रड जाए थे, ओ निर्दर्दे मैं पछताए तुझसे निहाल।
0: सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है, जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR

0: एक्सआर और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म, क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की,

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी

कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से, अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए, हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

0: मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सखीरी नहीं आए सज।
1: अभी रिले किए जा रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से हम बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11:55 होने को हैं। आकाशवाणी रायपुर से अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा। और छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर लगाई गई रोक। अब समाचार विस्तार से। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांवों में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। यह बात उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान कही। वहीं कल देर शाम उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा नारायणपुर में पुनर्वासित युवाओं से मिले और उन्हें गांव के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने युवाओं से पुनर्वास केंद्र में मिल रही सुविधाओं, प्रशिक्षण और रोजगार की जानकारी ली। इस अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। रायपुर जिले में 1381 बूथों पर 3,45,000 से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। छूटे हुए बच्चों को 29 और 30 जून को घर घर जाकर दवा दी जाएगी।

महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सुकमा जिले के प्रवास के दौरान सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लसकेपारा छिनगढ़ की पोषण वाटिका में बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुनगा को सुपोषण वृक्ष के रूप में पहचान मिल चुकी है, क्योंकि इसकी पत्तियां, फलियां और फूल पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं तथा कुपोषण की समस्या

0: में पहचान मिल चुकी है, क्योंकि इसकी पत्तियां, फलियां और फूल पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं तथा कुपोषण की समस्या से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़कों पर संचालन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे पहियों का उपयोग केवल खेतों में कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मेधावी बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई निर्धारित की गई है। तृतीय लिंग समुदाय के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रायपुर में 2 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के संबल केंद्र में होने वाले इस इंटरव्यू के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। 8वीं उत्तीर्ण पात्र अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रूपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो रोधी दवा और छत्तीसगढ़ में रबर टायर के बिना आयरन के व्हील वाले ट्रैक्टरों को सड़कों पर चलाने पर लगाई गई रोक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी रायपुर से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को।
2: साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा

0: बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन को।

राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। आंधी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में था। गुलजार के बोल कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाजें गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, अभिलाषा फिल्म के गीत में संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है सुबह 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं, और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार की आवाज में अमर प्रेम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आ गले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे अगर तुम ना होते फिल्म से ये गीत। गुलशन मावरा ने इसे लिखा राहुल देव बर्मन की तर्ज, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोजाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें। आज की इबारत है, यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी, पहिया जीवन का चलता जाता, पीछे छूटा सारा नाता, चले मुसाफिर अपने रस्ते, कभी झूमते कभी तरसते, यही जीवन की रीत है भैया, कभी धूप तो कभी उछैया, दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीजें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं जहां समय एक निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है। हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों के खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे। कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हम सफर बन गए और जैसे पति पत्नी कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले, कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए।

और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी। उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते। विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं। और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं। तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई जो चीजें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है? ये सारी बातें आप हम तक भेजिए। तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए।

नमक हराम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम की भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर चलते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ बिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की यादें ताजा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज के सभी संगी साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे।

0: और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती जरूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारवां छूटता है, साथी संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवरत चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती है कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थी, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं। वे पल बड़े असहनीय होते हैं, जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं, या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं, किसी पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के जरिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है।
1: तेरे

याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़े दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियां, क्योंकि आमतौर पर सखियां तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहां पहुंचते थे एक ही समय में, तो कहीं मिल गए। तो इस तरह से कभी आप मिले हैं अपने किसी दोस्त से अचानक, और कैसा लगा, कैसा रहा, वो किस्सा क्या है हमें बता सकते हैं आप आज के इस कार्यक्रम में। और सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, ये गाना उन्होंने लिख भेजा है। कह रहे हैं एक बार चेन्नई से जबलपुर के सफर में एक मैडम साथ में थी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है, सो हमने मिल बांट कर खाना खाया। रात में जब ट्रेन सुनसान राहों में तेज रफ्तार से अपना सफर तय करी थी, अचानक मैम की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। मेरे पास जो अंग्रेजी मेडिसिन या घरेलू दवाइयां थी उन्हें मैंने उन्हें दिया, जिससे उन्हें थोड़ा आराम आया। मेरा स्टेशन आने वाला था पर मुझे लग रहा था कि मैं ना उतरूं ताकि उनकी देखभाल कर सकूं, पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो अब ठीक है। फिर भी लगातार फोन पर कॉन्टेक्ट बना रहा और वो मुझसे आज भी बात करती हैं और कहती हैं, मेरी जीवनदायिनी हो तुम, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हम तो सभी शुक्रगुजार हैं उस परवरदिगार की, कह रही हैं कि जो सारी दुनिया को संभाले बैठा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने की, और इस खूबसूरत किस्से के जरिए ही आपकी ये मुलाकात यादगार भी बन गई, और जो बातें थोड़ी मोड़ी हो रही थी वो एक अच्छे रिश्ते में बदल गए, हम कह सकते हैं दोस्ती के रिश्ते में, जो आप भी आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जीवन की ये यात्रा कुछ इसी तरह से चलती है, जहां हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे हमारा वाकई कोई खून का रिश्ता ना भी हो, लेकिन बातों के जरिए या एक दूसरे के व्यवहार के जरिए ये रिश्ता बन जाता है। और जीवन के इस चक्र के बारे में क्या ही कहा जाए। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि इस गीत को किसने गाया है।

आशीर्वाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज, गुलजार के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज बातें कुछ बीते जमाने की, या कहें जो बिछड़ जाते हैं ऐसे दोस्तों की, जो मिल जाते हैं वापस ऐसे दोस्तों की, और जीवन के इस चक्र की जो लगातार चलता रहता है और इसके पीछे कुछ छूटता है आगे कुछ मिलता है। हमारे साथी कहने के जीवन का चक्र का सही और सुहाना अर्थ आज के सुरीला सफर गीतों के माध्यम से दोहरा रहा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं गीतों के माध्यम से इन्होंने अपनी बात लिखी कि आज की इबारत पढ़कर लग रहा है कि सुरीला सफर की ट्रेन के पहिए जीवन चक्र से जुड़े हुए हैं, जिसमें आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, लेके चले कभी इबारत कभी बिना सामान चले, जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रिश्ते, जहाँ एक पल थम के रोना होगा एक पल चल के हंसना, क्योंकि सुख और दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, इसलिए कह गए ज्ञानी दुनिया है फानी, पानी पे लिखी कहानी ये बात किसी ने नहीं जानी, जब हम सफर साथ छोड़ अपना छोड़ चले, रिश्ते नाते वो सारे तोड़ चले, जीवन में साथ चलते चलते अंत में तो अकेले ही जाना है। इस बात से जुड़ा एक गुजराती गीत भी है, एकला ज आव्या मनवा एकला जवाना, साथी बिना संगी बिना एकला जवाना, ये इन्होंने लिख भेजा है बहुत सारे गीतों को साथ जोड़कर। हमारे एक साथी कहने कि सिने सृष्टि को दाद दी जाए, जिंदगी का एक भी पहलू नहीं छूटा, चाहे गीत हो संगीत हो राग हो या चित्रपट की कहानी हो, हमारे धुरंधर गीतकार जो 50 से 80 90 के दशकों में हो गए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जिंदगी को शब्दों में निचोड़ कर रख दिया, एक एक गजल में एक एक पंक्ति में एक एक गीत में, आज आशा है बहुत सारे गाने हमेशा की तरह सुनने का मजा आएगा। और इन्होंने गीत भी अपनी पसंद का लिख भेजा है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय के साथ जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, दोस्त यार समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, बस एक ही रिश्ता जीवन भर साथ चलता है, वो है जीवन साथी का। एक और साथी कहते हैं कि जो भी कविता हमने जो भी इबारत लिखी है, इसके अंश का भावार्थ बहुत ही सरल मार्मिक और जीवन के गहरे सत्य को दर्शाता है। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन की निरंतरता और उसमें आने वाले बदलावों को खूबसूरती से पिरोया है। कवि ने बताने की कोशिश की है कि सच्चा साथी केवल समय है, जीवन के सफर में हमारे बहुत से मित्र यार दोस्त और संगी साथी बनते हैं, समय के साथ इनमें से कई पीछे छूट जाते हैं, कुछ ही हमारे साथ बाकी रह जाते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, ऐसा इन्होंने गीत के माध्यम से अपनी बात लिख भेजी है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज हमें अपने बचपन में जाना है, बचपन की वो बातें, दादी नानी की कहानी और किस्से होने वाले हैं, आज के प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है, आज किस्से कहानी और पहेलियों से भरे प्रोग्राम पेश किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे शहर को भी लेकर एक कहानी, क्या जबली नाम के ऋषि रहते थे, उनके नाम पर शहर का नाम पड़ा जबलपुर। तो ये बातें तो आप भेजिए, साथ ही बताइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जुड़ी

सी बातें जिन्होंने आपसे जिन मतलब तो जिनसे आप जुड़े रहना चाहते हैं, जिन्हें आप खोजते हैं या जिनसे मिलकर आपको बड़ा आनंद आता है, उनके बारे में कुछ बताइए। तब तक हम आपको सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत, जो भी जीवन के इस दर्शन को बिल्कुल सार्थक बताता है। और इस गीत में कौन है नायक ये बताइए, फिल्म का नाम भी बताइए।

परिचय फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आते हैं जितेंद्र। ये हमारे सवाल का सही जवाब था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी कभी अनायास ही कहीं कहीं कहीं कभी कुछ लोग मिल जाते हैं जो स्मृतियों में रह जाते हैं सदा के लिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं जीवन में किसी भी समय कोई भी मुसीबत आती है तो रिश्तेदार और परिवार वाले तो बाद में आते हैं, सबसे पहले पड़ोसी और दोस्त ही साथ देने पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथी हैं जिन्हें परेशानी आ रही थी सुरीला सफर की पोस्ट पर जाने के लिए, वो कह रहे हैं कि जल्दी ही पोस्ट आती है, उस वक्त तो नजर आती है, लेकिन जब 1 बजे कार्यक्रम आता है तो किस तरह से उस पोस्ट पर पहुंचे। तो ये बहुत ही आसान है, जिस तरह से आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर उस वक्त सुरीला सफर की पोस्ट देख पाते हैं, तो विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का पेज अगर आप खोलते हैं तो वहां आपको कुछ थोड़ा स्क्रॉल करने पर 2-3 पोस्ट के नीचे ही सुरीला सफर की पोस्ट नजर आ जाएगी और आप वहां कमेंट के जरिए हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि एक दोस्त जो कि हमारे साथ 1980 में पढ़ा था, एक दिन में अपनी श्रीमती जी को ट्रेन पर छोड़ने गया तो वहां पर वो दोस्त मिला। वो तो नहीं पहचाना पर मैं पहचान गया, जब उसको याद दिलाया तो वो भी पहचान गया, वो उसी ट्रेन में टीसी था। ये मुलाकात साल 2000 में हुई थी। वाकई बहुत ही मजा आया होगा आपको मिलकर। और ये भी अक्सर होता है कि लोग इतनी बदल जाते हैं चेहरा वगैरह कि हम पहचान नहीं पाते, तो जो पहचान सकता है वो दोस्त जरूर सबको खोज लेता है। और वाकई हर टीम में, या कहते हैं कि हर दोस्ती वाले जो एक ग्रुप होता है उसमें एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता है जो पुराने

पुराने साथियों को खोज खोज कर लाता है और सबसे मिलवा देता है। तो क्या आप भी ऐसे ही दोस्त हैं, हमें बताइएगा। हमारे एक और साथी का कहना है कि बहनें मिल जाती हैं लेकिन सहेलियां नहीं मिल पाती। वाकई ये बात भी सही है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में सभी रिश्ते बने बने मिल जाते हैं लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता है जो दिल से जुड़ता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे स्कूल के जमाने की दोस्त की हमेशा मेरे साथ है और रहेगी। इन दिनों मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, वो हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, यार मेरा साथ मत छोड़ देना क्योंकि मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे होता है दोस्ती का रिश्ता, निस्वार्थ, बहुत सुंदर, बहुत प्यार। मेरी जैसी दोस्त सबको मिले, पता नहीं मैं जी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन उससे बिछड़ने का दुख मुझे सता रहा है। बिल्कुल भी नहीं, आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सोचें क्योंकि आपकी दोस्त आपके साथ है और जब दोस्त साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किलें टल जाती हैं। तो अपने मन में सकारात्मकता रखिए कि वाकई आपको जो भी परेशानी है वो जल्द से जल्द दूर होगी और इलाज तो आप करवा ही रही होंगी। उस पर पूरा ध्यान रखिए, जो भी बातें कही जाती हैं चिकित्सक की ओर से आपको उसका ध्यान रखिए और समय पर दवाइयां लीजिए। आप बिल्कुल चंगी हो जाएंगी हम कहते हैं, और आपकी दोस्त का जो भी आपके साथ में प्रेम है वो प्रेम बना रहेगा, आप दोनों का साथ भी बना रहेगा, यही हमारी कामना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियां होते ही नानी के घर जाने की जो उत्सुकता होती थी उसकी तुलना आज के किसी भी लग्जरी ट्रिप से नहीं की जा सकती। रात को छत पर चारपाई बिछाकर ठंडी हवा के झोंकों के बीच नानी या दादी को घेर कर बैठ जाना और फिर शुरू होता था कहानियों का एक ऐसा अटूट सिलसिला जो हमें नींद की आगोश तक ले जाता था। वाकई और कई बार तो नींद उड़ जाती थी कहानी सुनने की चाह में कि कहीं कहानी का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो छूट ना जाए। और जो अपने मामा मामी मामा के बच्चे होते हैं, मौसियों के बच्चे होते हैं, उनसे भी तो एक बड़ी दोस्ती होती है जो गर्मी की छुट्टियों में ही निभाई जाती है। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें तो कही हैं, हमें ये भी बताइएगा कि किसी तरह से आप अपने बिछड़े दोस्त या सहेली से मिले और मिले तो वो किस्सा क्या है, और ये भी बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें संगीत किसका है।

दोस्ती फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, सुरीला सफर। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत जीवन संघर्ष की भावनात्मक कहानी का चित्रण कर रही है। लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जीवन तो चलता रहता है। आदमी जिंदगी के सुख दुख और धूप छांव जैसी कहानियों का किरदार बना रहता है। हमारी कौर साथी कहते हैं कि जीवन का पहिया समय के अनुसार आगे बढ़ता जाता है, दोस्त साथी नाता रिश्ता पीछे छूटता जाता है, और मुसाफिर अपने रास्ते झूमते तरसते बढ़ता जाता है, यही जीवन की रीत है। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन के इंद्रधनुषी सतरंगों से सजी कवितामयी लघु भारत स्वागत योग्य है। बाल्यकाल की निस्वार्थ पवित्र मित्रता से जुड़े संगी साथी युवा काल तक आते आते सम अभिरुचि और समानांतरता तक सीमित रह जाते हैं। तत्पश्चात गृहस्थ काल में उत्तरदायित्व के दलदल में आकंठ फंसे दिनचर्या में वो संख्या यादों में ही सिमट रह जाती है। शुक्र है तकनीकी तब्दीली से प्राप्त सोशल मीडिया का, जिसने उत्तरार्ध में पुनः उन्हें एकत्रित कर जीवन में उमंग भर कर उन मैत्रीपूर्ण स्वर्ण युगों को पुनर्जीवित कर दिया है। और हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि कितना अकेलापन है इस भीड़ भरी दुनिया में। इस भीड़ भरी दुनिया में आखिर हम दिल को कहां ले जाएं? लोग आते हैं, मिलते हैं, कारमा बनता है, फिर भी हर किसी को अकेले आए थे, अकेले जाना पड़ता है। जीवन की नैया चलती रहेगी, उम्र बीतती जाती है। फिर दादी बताती है कि सब कर्म का, कह रहे हैं कि सब कर्म का भोग है, यही जीवन है, इस जीवन का यही रंग रूप है, चलते रहना हमारा काम है। ऊपर वाले मांझी के हाथ में हमारी डोर है, और हम तो बस कठपुतली हैं, वही हमारा खेवैया है, वही तारणहार है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। वाकई बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरा दोस्त तो पढ़ाई के दौरान ही इस जीवन को छोड़कर चले गए। दुख तो इस बात का है कि एक ही मोहल्ले में थे और एक ही स्कूल में साथ रहा करते थे। हमारे एक और साथी कहते हैं कि कहने को तो सब रिश्ते नाते हैं सबके सब हैं, यहीं रह जाते। आज भले ही लगा है मेला, अंत समय तो चला अकेला। माया का बाजार लगा है, जिसको देखो वही सगा है, लेकिन आंखें कब भराई जब देखी उनकी सच्चाई। सब स्वार्थ के मीत हैं सारे, अंत समय बस राम है प्यारे। वही हमारे और साथी कहते हैं कि हम 1978 के कॉलेज बैच में अभी तक वार्षिक भेंट करते हैं, समूह का नाम भी रखा है पुनर्मिलन 78। दिन भर मौज मस्ती करते हैं, लगता है जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज कॉमन रूम में है। वही हमारे और साथी कहते हैं कि एक बात बताना चाहती हैं, अभी भी कभी भी हम किसी अपने प्यारे से दोस्त को याद करते हैं तो, या उसकी कोई बात सामने आ जाती है तो, या उसका कॉल आ जाता है, या तो वो कहते हैं कि मैंने आपको अभी याद किया। कभी कभी किसी दोस्त का प्यारा सा एहसास ये याद दिलाता है कि कोई है जो हमें दिल से याद कर रहा है। हमारे कौर साथी कहते हैं कि जहाँ याराना वो खूबसूरत रिश्ता है जहाँ शब्दों से ज्यादा एहसास बोलते हैं। सच्चे यार हर खुशी में मुस्कुराते हैं और मुश्किल में साथ निभाते हैं। जिंदगी की राह में याराना ही सबसे अनमोल खजाना है। वाकई, और जीवन में इस तरह की जो बातें हैं वो लगी रहती हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भाई कितनी मुश्किलें हैं, और कई बार लगता है कि बस जीवन तो इसी तरह से चलता रहता है, ये मुश्किलें भी पार हो जाएंगी। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किसकी आवाज में है।

0: तो कभी छा।
1: कभी धूप कभी छांव, कवि प्रदीप की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। चित्रगुप्त का संगीत, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। संगीत किसके आवाज में गीत हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा। हमारे साथी कह रहे हैं कि बचपन से लेकर आज तक जीवन में कई दोस्त मिले, कुछ नए दोस्त बने, कुछ समय के साथ दूर हो गए, कुछ यादों में बस गए, लेकिन मेरा एक ऐसा दोस्त था जिसके बिना मैं अपने बचपन की कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारी दोस्ती सिर्फ साथ रहने तक सीमित नहीं थी, बल्कि हम दोनों की जान एक दूसरे में बसती थी। हमने साथ खेला, साथ हंसे, छोटे छोटे सपने देखे और जीवन के कई खूबसूरत पल साझा किए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। कभी कभी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए हुए दिन अचानक याद आ जाते हैं और मन भावुक होता है। भाई ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आपको बचपन से ये साथ मिला, कितनी अच्छी बात है ये। हमारे एक साथी कह रहे कि पिछले कई वर्षों से पाठशाला रीयूनियन चलन में है। विदेश से आया एक सहपाठी अहमदाबाद शादी में सम्मिलित होने आया और उसने एक रीयूनियन का आयोजन किया। जिन दोस्तों से स्कूल में होते हुए भी नहीं मिल पाए थे, उनसे भी मिलना हो जाता है। वहीं मालिक साथी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविता साझा की है। जीवन के सुप्रभात खिल रहे कमल धर पग पायल मन पटल पर, नयन जीवंत हो तुम अंतर मन में निरंतर अनहद धवन चल रहा है। हर मन प्यार पानी कंठ भर रहा हूँ, स्वर तेरे दर्शन का मैं अभिलाषी। हम कहना चाहेंगे कि अगर आप कविता भेजते हैं तो एक जहाँ उसमें जो पंक्तियां होती हैं उस तरह से अगर लिखें तो ये बहुत ही आसान होगा, आपकी कविता भी बहुत अच्छी तरह से सामने आ पाएगी। हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरे स्कूल के फ्रेंड्स और कॉलेज के फ्रेंड मुझे फेसबुक पर मिले और हमारा लकड़े वाला था, वहाँ के फ्रेंड भी फेसबुक पर मिलके, सहेलियां और दोस्त भी, सुरीला सफर के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार उन्होंने कहा है। तो इनके सारे जो दोस्त यार हैं

मोने सोशल मीडिया पर मिल गए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के इस कार्यक्रम से उन्हें अपने एक दोस्त की याद आ गई जो 2002 में अचानक से पूरे परिवार के साथ कहीं चला गया था और रातों रात, और 2 महीने पहले उसी का फोन आया मेरे पास। वाकई बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको अचानक फोन आना, दोस्त को अचानक नंबर मिलना और आपके पास अचानक फोन आना। वही हमारे एक साथी कह रहे कि मैं छोटा था तब एक गांव में रहता था, वहां मेरे दोस्त अब शहर में आने के बाद छूट गए। आज 40 साल की उम्र के बाद कोई मिलता है तो मुझे याद नहीं रहता है। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा होगा जो आपको याद करेगा और आप भी उसे याद रखते होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की बारात जीवन के अनवरत सफर की कहानी कहती है, जहां दोस्त रिश्ते और अपने समय के साथ पीछे छूटते जाते हैं लेकिन जीवन का पहिया लगातार चलता रहता है। कभी खुशियों की धूप मिलती है तो कभी दुख की छाया। मुसाफिर की तरह हर व्यक्ति अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है और दादी नानी की कहानियों की तरह जीवन हमें हर मोड़ पर नई सीख देता है। यही जीवन का शाश्वत सत्य है और यही आज की भारत का मूल संदेश भी है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि मेरी सहेली से 35 साल बाद मिली और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था और आज भी हम दोनों बहुत बातें करते हैं। वाकई सहेलियों का वापस मिलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि अलग अलग जगह विवाह के बाद चली जाती हैं सहेलियां आमतौर पर, और उसके बाद उनका मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी अगर थोड़े पुराने जमाने की हों जब सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था या फोन उस वक्त इतने ज्यादा नहीं थे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक गीत आपको सुनवाते हैं जब सभी सहेलियां वाकई भावुक हो जाती हैं। बताइए कौन सी फिल्म का गीत है।

लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गाने सुरीला सफर में, और आपकी बातें शामिल हो रही हैं इस कार्यक्रम में। कमेंट्स के जरिए जो बातें आप हम तक भेज रहे हैं, हमारे साथी कहते हैं कि एक ऐसा मौका था जब जहां पुराने क्लास के साथियों से मिलने का मौका मिला, स्कूल कोएड है, मीट में कई स्कूल के गुरुजनों से आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला, एक अलग ही तरह का माहौल था। उस दिन सब खुश थे और खुशी के आंसू भी थे। एलुमनी मीट जो होती है आमतौर पर कॉलेज और स्कूल्स में बुलाए जाते हैं, पुराने सहपाठियों से मिलने का वहां मौका मिलता है। वहीं हमारे साथी कह रहे कि हमारे अगल बगल में रहने वाले 10-12 दोस्त रात को खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटा रोज बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, हंसी मजाक करके अपना माइंड फ्रेश करते हैं। भाई हम तो कहेंगे कि आप सबसे अमीर हैं इन दिनों, क्योंकि इतने सारे दोस्त आपके पास हैं। और जो कमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था उसमें हमारे साथी ने जो लिखा था शुरुआती बात कि 2022 में वो अपने डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल अजमेर में गए थे एलुमनी मीट में, और वहां उन्हें सबसे मिलने का मौका मिला था। हमारे को साथी कह रहे हैं कि 2 साल पहले सपरिवार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए ट्रेन से गए थे। दर्शन के बाद हमारी वहां पर उदयपुर के परिवार के साथ परिचय हुआ, फिर हम वहां से टैक्सी किराए पर लेकर जिणमाता सालासर धाम और अन्य जगह दर्शन किए, और उस परिवार से आज तक मोबाइल से रिश्ता बना हुआ है। तो कई बार इस तरह से भी दोस्त मिल जाते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हाँ, हम बहुत दिनों के बाद दोस्तों से मिले, हमारा विश्वास बरकरार है, अभी भी वो मेरा बड़ा ख्याल रखती है, सालों बाद देखने के बावजूद वही प्यार विश्वास का अनुभव हुआ है, भगवान उसे जल्दी ठीक करे, अब पता नहीं क्यों डिप्रेशन में गई है। भाई अगर डिप्रेशन में गई भी हैं तो उसका कारण तो आप पता कर ही लेंगी, साथ ही उनका साथ बने रहिए और उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने में भी उनकी मदद कीजिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1975 में पिताजी का ट्रांसफर सांची में हुआ था, वहां पर हमने 8वीं क्लास की पढ़ाई की, बाकी साथी तो बिछड़ गए, लेकिन एक दोस्त से 50 साल बाद साल 2025 में मुलाकात हुई, हमने पुरानी बातें की, तो कितनी अच्छी रही होगी ये मुलाकात, हम बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात में तो आपने बहुत सारी चीजें की होंगी, बहुत सारी पुरानी बातें यादें ताजा की होंगी। तो चलिए एक याद ताजा कीजिए इस गीत के साथ, और हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है।

किया का घर फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे साथी कह रहे हैं कि बिछड़ने के बारे में है, जीवन में मिलना बिछड़ना चलता रहता है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में दिसंबर 25 में एलुमनी मीट जब हुई तो 40 से 45 लोगों से, इतने 40 45 साल बाद सबसे दोस्तों से वो मिले। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गाँव के काम से गाँव में से ऑफिस के काम के लिए बाहर जा रहे थे तो ठंडी हवा का मौसम था, गाड़ी में पंखा जोर से चल रहा था, तो उठकर पंखा बंद करने के लिए जैसे ही स्विच पर उंगली रखी तो एक जो साथी यात्री था उसने मना किया, और जब उलझ पड़े और सबके सब लड़ाई झगड़ा जो होने लगा, उनकी बहस होने लगी, तो मैंने सोचा कि अब मेरी खैर नहीं। शोर सुनकर बगल वाले एक कोच से एक लंबा चौड़ा शख्स वहां आया और मुझे देखकर चौंक पड़ा, बोला अरे तू, और मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन उसने सभी को शांत किया। पुलिस इंस्पेक्टर था वो, उसने पहचान पत्र दिखाया, वो मेरे बचपन का दोस्त था। 30 साल के बाद उसकी इस तरह से हमारी मुलाकात हुई, तो कितनी अच्छी मुलाकात रही होगी ये। और जीवन का भी ये सफर तो यूं ही चलता रहेगा। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत, बताइए किसकी आवाज में।

सचिन देव बर्मन की आवाज में गाइड फिल्म से गीत आपने सुना। यही कार्यक्रम का अंतिम गीत था। हमारी यही कामना है कि आपके सभी साथी बिछड़े हुए जो भी हैं वो आपको मिल जाएं और आप प्रसन्नता से रहें, और आपकी एक साथी विविध भारती तो हमेशा आपके साथ है। सुरीला सफर जारी रहेगा विविध भारती का, लेकिन ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी चेहरे पर। श्रोताओं, जब भी सुंदरता की बात होती है तब सबसे पहले चांद का नाम याद आता है। सदियों से चांद को कोमलता, शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। लेकिन कभी कभी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनकी सुंदरता केवल रूप रंग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विचारों और भावनाओं की चमक उन्हें और भी खूबसूरत बना देती है। चांद रात के अंधकार में प्रकाश फैलाता है, उसकी चांदनी धरती को एक अनोखी शीतलता प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार कुछ लोगों का चेहरा भी अपने आसपास के वातावरण को आनंद, स्नेह और सकारात्मकता से भर देता है। ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां अपने सुंदरता, अपने मधुर व्यवहार और सरल स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेते हैं।

माँ अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती है तब उसका चेहरा किसी पूर्णिमा के चांद से कम नहीं लगता। उसमें त्याग, ममता और निस्वार्थ प्रेम की ऐसी आभा होती है जो किसी भी सौंदर्य प्रसाधन से प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी प्रकार पिता के चेहरे पर परिवार के लिए किए गए संघर्षों की रेखा भले ही दिखाई दे, लेकिन उसमें समर्पण और जिम्मेदारी का जो तेज होता है वह उन्हें अत्यंत सुंदर बना देता है। बच्चों के चेहरे भी चांद से कम सुंदर नहीं होते हैं। उनके निष्कपट हंसी, भोलेपन से भरी आंखें और मन में किसी प्रकार का छल कपट ना होना उनके चेहरे को विशेष आकर्षण प्रदान करता है। बच्चे की मुस्कान में वो जादू होता है जो किसी भी उदास व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मासूमियत सबसे बड़ी सुंदरता है। साहित्य में भी सुंदर चेहरे का वर्णन केवल बाहरी रूप के आधार पर नहीं किया गया। महाकवि और साहित्यकार बार बार इस बात पर बल देते हैं कि सुंदरता का वास्तविक निवास मन में होता है। यदि मन सुंदर है तो उसका प्रभाव चेहरे पर दिखाई ही देता है।

लोग अक्सर बाहरी सुंदरता को अधिक महत्व देते हैं। महंगे सौंदर्य प्रसाधन, फैशन और दिखावे की दुनिया में असली सुंदरता का अर्थ कहीं पीछे छूटता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि सुंदर चेहरा वही है जो दूसरों के जीवन में खुशी और आशा का प्रकाश फैलाए। जिस चेहरे को देखकर किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना मिले, किसी निराश व्यक्ति को प्रेरणा मिले और किसी अकेले व्यक्ति को अपनापन महसूस हो, वही चेहरा लोगों की नजर में सुंदर होता है। लेकिन एक सुंदर व्यक्तित्व वाला चेहरा हृदय को स्पर्श कर जाता है। चांद की चांदनी कुछ घंटों के लिए संसार को रोशन करती है, जबकि प्रेम, करुणा, विनम्रता और सदाचार से आलोकित चेहरा जीवन भर लोगों के मन में उजाला फैलाता है। इसलिए सच्ची सुंदरता चेहरे की बनावट में नहीं, बल्कि मन की निर्मलता और चरित्र की उज्ज्वलता में निहित है। ऐसा चेहरा न केवल खूबसूरत होता है, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है। दिल को

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से

0: जबरदस्त
1: अच्छा
0: तरक्की
1: ठीक
0: कर
1: है,
0: रहा है
1: ठीक
0: और एक वैश्विक
1: है, इसी
0: शक्ति के
1: चीज
0: रूप
1: पे
0: में
1: मेरा हूँ
0: पहचान
1: फोकस।
0: बना रहा है, एक ऐसा देश
1: जो
0: जिसकी
1: काम
0: वैश्विक स्तर पर फैसलों में
1: ग्लोबल
0: अहम भूमिका रहती है।
1: स्टेज।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा। ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
4: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी अभी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
3: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
4: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोगों परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
5: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
3: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में

0: पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौड़ में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया।

0: तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर

0: एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 20 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

अनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं, इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजती हैं, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विद्यार्थी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ोदे और चंद्र प्रभा बाड़ोदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से। एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है, और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत, जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पंवार, मोहम्मद

की पवार मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, असद भोपाली के बोल रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयां।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूं, समझे? अब मैं हूं डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दुराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहां गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूं। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
0: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
1: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
0: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना किरकिटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का जो लेडी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, I am डॉक्टर भारती। डॉक्टर रतनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है, मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या?
0: अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा

0: जिसे निभाना जरूरी हो गया। बताओ तो जरा।
1: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहड़ से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
0: तो तुम उन्हें जानती हो?
1: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
0: अब क्या बताऊं भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
1: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
0: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
1: मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है। मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
0: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
1: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
0: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
1: आई एम सो सॉरी उमा।
0: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
1: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: शुक्रिया।
1: मुझे आज्ञा दो।
0: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताक के रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: पूरा वक्त मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझे अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना भी।

0: थी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार स्वामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है। उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई। मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो, ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ, आप चिंता ना करें मामा जी।
2: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
2: डॉक्टर जी, पैसा नहीं है डॉक्टर जी।
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
3: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गए नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
3: एक ही करके पूछिए ना।
1: कहो तो।
3: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
3: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
3: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
3: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
2: डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ, जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
2: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
3: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
3: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
3: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
3: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
3: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
4: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
0: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
4: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
0: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
4: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
0: भारती, तुम?
4: अच्छा, तो ये बात है।
0: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
0: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गाँव के बड़े आदमी है।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
4: सुना आपने?
0: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
4: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त हम चले जाते।

0: भारती, भारती तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
0: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूं, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओ, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है। आप चिंता छोड़िए मामा जी।
0: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
1: क्या हुआ मामा जी?
0: सीनो,
1: मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
0: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
1: ले जाइए, ये लीजिए पानी। भगवान, दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है।
0: अम्मा,
1: मामा जी, मामा जी, मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहते हो। ये लो उतर आए तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा भैया अट्टहास कैसा? हंसते भाई पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
0: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई? जानम्मा
2: जी
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
2: जी बहुत अच्छा।
0: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा
1: भाई दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं, ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं, और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: इसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
1: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या?

0: कर रहे हैं।
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें, औजार, साधन सामग्रियां हैं। इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना।
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों, सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं। बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ जाना ही चाहिए। तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
1: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन सुमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप है ना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज। देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर, जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सूझता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: अब पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चलो चलो
1: कंपाउंडर, वो बस ले आओ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में 3-4 गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी? कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बेटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
5: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
5: ये ना भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: कोई दरवाजा खटखटा रहा है,
6: डॉक्टर अम्मा!
1: देखती हूँ कौन है।
5: रात के 10 बज चुके हैं।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: अरे नानी, तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
6: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
6: आपके पैरों पर

0: करती हूँ। बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है। जल्दी चलिए माई जी,
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
2: जानम माँ, अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
0: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आई डॉक्टर अम्मा,
1: जल्दी चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्का कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए, नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है? अरे बचाओ, अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं लेने के तेरे। कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
3: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
7: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
6: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्र

संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: Silence. Lights. Sound. Camera. Action.
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी

0: मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
2: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
1: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
2: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
1: ये 1973 में, 1973 में हरियाणा से मुंबई आ गए?
2: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था। हाँ। दिल्ली से मुंबई आया।
1: अच्छा।
2: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
1: जी,
2: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई। अच्छा। थी उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
2: तीन दोस्त आए। हाँ। थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
1: अच्छा।
2: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
1: कौन? आप?
2: सुधाकर।
1: अच्छा।
2: बोला ये तो शक्ल से चोर लगता है, तो वहां कुछ हो गया तो।
1: अरे।
2: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। अच्छा। मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बंबई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
1: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
2: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
2: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
1: अच्छा।
2: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे।
1: अच्छा।
2: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहां उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुंचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते थे?
2: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और भाई ये चाय

0: आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे,
0: यही काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: करता।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
1: हाँ
0: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे। तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी और दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं
1: पैसा
0: था,
1: मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो? मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था, मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी,
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूबा।
1: महबूबा।

0: इस बीच माता पिता से बात होती रही, क्या उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई,
1: जी
0: क्या
1: जी
0: उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे,
0: हाँ
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि

0: मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
1: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
0: जी जी जी
1: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
0: नहीं
1: आप
0: नहीं
1: शंकर
0: नहीं
1: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
0: बस
1: क्या?
0: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
1: अच्छा।
0: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई
1: दिक्कत नहीं
0: परेशानी नहीं
1: थी।
0: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
1: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
0: लगभग
1: रच
0: दो
1: ली
0: ढाई
1: थी?
0: सौ गीत मैंने लिखे थे,
1: अच्छा।
0: गीत तो रोज लिखता था। लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए
1: गुम,
0: क्या।
1: बिल्कुल।
0: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
1: अच्छा।
0: और कहा कि हसरत मियाँ ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ। ये उनके वर्ड थे।
1: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
0: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है, मतलब काफी समय हो गया है। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन
1: हाँ
0: बस घर देख लेते थे
1: हाँ
0: तो उसमें
1: उसमें
0: खुश हो
1: भी
0: जाए।
1: ऊर्जा आ जाती थी,
0: हाँ लगता
1: मोटिवेशन
0: था,
1: मिलता था
0: मोटिवेशन
1: कि
0: होता
1: कभी
0: था
1: हमारा भी ऐसा
0: कि
1: घर
0: कभी हमारा भी होगा।
1: होगा।
0: दिलीप साहब के घर के सामने ना जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे क्यों
1: कौन
0: नहीं,
1: देता
0: कौन
1: था?
0: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
0: हो
1: साहब के
0: सकता है,
1: प्रति, ना? इस
0: हो सकता
1: दीवानगी
0: है,
1: में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते
1: हैं।
0: हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
1: जी।
0: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
1: जी
0: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए।
1: जी
0: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूं जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
1: जी खैर, ये तो
0: कहीं ना
1: आप
0: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा।
0: उनके जैसा हो सकता है,
1: जी
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना,
0: जी
1: हजरत
0: जी
1: साहब
0: जी
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
0: जी
1: है ना
0: जी
1: सुधाकर जी? तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
1: जी
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं नहीं आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी
0: बताइए।
1: क्योंकि
0: चलिए।
1: ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की,
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी

0: नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले
1: तो
0: मुझे।
1: हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था,
0: नहीं,
1: वो कोई
0: वो
1: और
0: कोई और
1: था।
0: था।
1: जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
0: जी जी जी
1: तो
0: जी
1: बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप
0: जी
1: शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
0: जी जी
1: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान
0: देखिए,
1: तो नहीं होता इतने बड़े
0: बहुत
1: लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
1: मिल
0: गए,
1: गए।
0: वो मुझे मिल गए। और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई,
1: अच्छा
0: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
1: अच्छा
0: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे। वो
1: अच्छा
0: कहते थे, ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं बोलता था, मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ। मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया। वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था, और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा, बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा, जी वो क्या होता है? बोले, कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा,
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना।
1: बहुत सुंदर, आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत।

0: नंबर वन।
1: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
2: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
2: जी जी।
1: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
2: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना कैसे चाहिए वो सब मैंने वहीं
1: तो
2: से सीखा।
1: वाला थे किशोर
2: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
1: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
2: वो फिल्म थी गोरी।
1: गोरी,
2: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
1: अच्छा।
2: विजय त्यागी।
1: विजय त्यागी,
2: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
1: हाँ।
2: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे
2: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे। तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था। उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
1: अरे क्या बात है।
2: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान संगीतकार। और उन्होंने समझा।

0: आपकी परिस्थिति को,
1: जी।
0: और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही
1: नहीं,
0: था?
1: मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार।
0: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
0: अच्छा, कौन सा गीत?
1: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
0: क्या बात है।
1: का।
0: ये गीत तो हर एक के दिलो
1: जी
0: दिमाग में है,
1: जी
0: और
1: जी
0: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए
1: इस
0: जाते
1: गीत
0: हैं।
1: ने मेरी जिंदगी बना दी। मतलब
0: अच्छा।
1: ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ,
0: हाँ।
1: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब, जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया,
0: अच्छा।
1: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार, अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, दो तीन पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं। तो मैं हिमेश जी के साथ जो है ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
0: अच्छा।
1: हाँ, और लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था,
0: जी
1: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है। मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या
0: डरना
1: का
0: क्या।
1: टाइटल सॉन्ग था,
0: जी,
1: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
0: आपको
1: दिया।
0: दिया। हाँ।
1: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा, और ऐसा होगा वैसा होगा।
0: तो
1: पहली
0: हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
1: फिल्म थी उनकी, ये पहली फिल्म थी। तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली,
0: ठीक है।
1: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे,
0: हाँ।
1: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
0: अच्छा।
1: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा
0: हाँ,
1: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
0: तेरे
1: की,
0: नाम की।
1: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना, तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको वो एक गाना मिला, और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके।
0: क्योंकि तुम वो हटके।
1: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए, और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे,
0: हाँ,
1: तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि
0: जितने
1: अपना गाना कब शुरू होता है। और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ, और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे
0: अच्छा,
1: अपने गाने पे,
0: क्या बात है।
1: दोनों बहुत खुश हुए, और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई। और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई।
0: बन गया।

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं
0: गीतकार।
1: भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: पर ये
1: मैं
0: गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत
0: ढाला है
1: सुंदर है
0: और
1: इसमें,
0: पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है इस फिल्म
1: सबसे
0: का।
1: बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही
0: जी
1: दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने
0: बहुत
1: उनके
0: बड़ी बात,
1: दिमाग में
0: बहुत
1: डाली,
0: बारीक काम था
1: बहुत
0: ये, बारीक
1: बारीक
0: काम
1: काम
0: था।
1: किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं
0: बिल्कुल।
1: और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये पैंतरा क्या था और किस
1: देखिए
0: तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए।
0: हाँ।
1: वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये
0: बहुत खूब,
1: ओढ़ली पैंतरा
0: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये,
1: जी
0: जिसे
1: जी
0: हर एक को समझना आसान नहीं था।
1: जी जी
0: तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार

0: इंसानों को इस गीत
1: जी
0: से
1: जी
0: में गवाया,
1: जी
0: तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी
1: ये
0: कहानी होती है।
1: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार शानू गाएं। तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपरहिट होगा, तो दादा को लाने में को मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे। तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है। तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही हैं
0: कुमार
1: वो,
0: सानू के
1: हाँ वो जो हैं बस वही हैं,
0: जी।
1: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है। तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा गा दूंगा, कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा अच्छा वो करता है, वो करूंगा करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की, उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है। तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, और मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
0: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा
1: पैंतरा हो
0: खेला।
1: गया।
0: जी
1: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी। तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ। तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये है वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया वहाँ से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
0: उनकी
1: उनका गाना
0: रिकॉर्डिंग
1: है।
0: है।
1: तो मैं सनी में पहुंचा, और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला,
0: अरे
1: बहुत बढ़िया इंसान थे वो। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
0: नहीं
1: सकती।
0: गा पाएंगे।
1: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
0: क्या बात है।
1: ये दिक्कत थी, लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहंशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
0: आंखें
1: बातें
0: बोलती
1: करती
0: हैं।
1: है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है, और

0: वो बात मैं कह नहीं पाया, लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा, इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए?
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती है ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये। हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी, और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके
0: गाते
1: लिए,
0: हैं
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता
0: गाते।
1: है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले हैं उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ
1: नहीं
0: करना,
1: है।
0: है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा। और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था, तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पर हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब
1: जरूरी
0: जाके
1: है।
0: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
1: कॉन्वेंट
0: है।
1: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता, तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके यारा दिल भी मारे झटके, तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
0: हाँ हाँ
1: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए

0: जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर,
1: जी
0: भले बाद में उसको पता
1: जी
0: लगे कि ये मेरी
1: सच्चाई
0: बहन की
1: यही है।
0: सच्चाई है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पहला उसका जो
1: रिएक्शन आएगा।
0: रिएक्शन आएगा, तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में, तुमको पड़ जाए ना फटके और भैया को तू खटके।
1: हाँ अच्छा
0: और ये
1: जी
0: गाना कंप्लीट
1: जी
0: हुआ,
1: जी जी
0: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
1: जी
0: हुए।
1: जी

0: खटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ आए, वो क्यों आए
2: क्यों आए
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा?
2: देखिए, ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूं जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूं कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूं।
1: जी, ये सबसे बड़ी
2: अपनी
1: बात
2: है। को रखते हुए
1: जी,
2: मैं
1: जी
2: ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है। कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूं वैसा ही दूं। तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी और
1: अच्छा
2: दादी गाएगी भी।
1: अच्छा
2: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा,
1: हाँ,
2: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी। अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी

0: अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे। और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा।
1: सही
0: मुझे
1: बात
0: एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है,
1: है।
0: कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया। अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है। तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि
1: बिल्कुल
0: मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे।
1: जी।
0: तो मैंने कहा ठीक है दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर। तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: उनको बुलाया। गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा।
0: पहले सिंगर तो मिले। तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा उसमें। अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी, अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी। तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है ये सब ऐसा होता है ना, तो बुड्ढी बुड्ढी भी नाचना शुरू कर देती हैं। और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं।
1: जी।
0: उनका अपना एक स्टाइल होता है। तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में, फिर बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी।
1: जी।
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे।
1: जी।
0: यहां तक तो दादी गाती है, अब
1: हाँ
0: लड़का क्या जवाब दे,
1: हाँ
0: दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है। तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी।
1: क्या बात है।
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब
1: जी।
0: आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा, तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूं।
1: जी,
0: गीत सुनाइए
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी। चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी
1: पसंद का ये गीत, फिल्म हमराज से।
0: हमराज।

0: ਸਾਡੇ ਆਏਗੀ ਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5 बजने को हैं। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने

लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगर

0: सूरजपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडाण, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मूड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, भेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, सोनहत, नवगई, गैना के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, बालाझर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 132 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के किंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलारगढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगूरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
2: हमर हाथी हमर गोठ, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी हम प्रसारित कर रहे थे। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा प्रसारण। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपकी नज़र कर रहे हैं बाहर आने तक, इस फिल्म का गाना। अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की आवाज़ें हैं। इंदीवन ने गीत को लिखा है और राजेश रोशन ने धुन बनाई है। आइए सुनते हैं ये गीत।

बाहर आने तक फिल्म के इस गाने के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। बाजीगर फिल्म से ये गीत हमने चुना है आपके लिए। विनोद राठौड़ और अलका या आशा भोसले की आवाजें हैं इसमें। आइए सुनते हैं जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ और अनु मलिक का संगीत बद्ध किया हुआ बाजीगर फिल्म का ये गाना।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं अंजाम फिल्म का गाना। आवाज अभिजीत की है, गीतकार हैं समीर और संगीतकार आनंद मिलिंद।

और आइए अब चित्रपट संगीत के इस अंक को सजाते हैं करण अर्जुन फिल्म के गीत से। आवाज़ें साधना सरगम मोहम्मद अजीज और साथियों की हैं, गीतकार हैं इंदिवर और संगीत निर्देशन राजेश रोशन का है।

आर या पार, यह है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। माया गोविंद ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है विजू शाह ने।

अरब चित्रपट संगीत कार्यक्रम के इस अंक के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं बलमा फिल्म का गाना कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

और इसी गाने के बाद चित्रपट संगीत कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है, लेकिन श्रोताओं कहीं जाइएगा नहीं, हम हाजिर हैं आपके लिए ईमेल फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंक लेकर। और इस अंक के पहले गीत की फरमाइश आप सभी ने ईमेल के जरिए की है, हम आप सभी के नाम बताते हैं। भूचो कैचिया बटिंडा से, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वारिंदर, सिमरन एकम, दमन और अभिजोत, पथरिया भरेवा से चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी नोमेश नेहा और वानिया सिंगरौल, मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक

प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर रमनदीप, दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और जेबा अजीम, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवहाणकर, श्वेता सुमित, ध्वनि गवहाणकर परी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता प्रणीता, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवहाणकर, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर, गांव उजभट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी और शिवन्या गोस्वामी, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी, भाटापारा से विष्णु साहू, पूरब वीरा, हर्ष कुमकुम और योगेश्वरी साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, दरियापुर बाबली से गजानन गेले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक गेले, गोगामा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से उस्मान खत्री, रिजवान खत्री और अब्दुल गफ्फार खत्री। आप सभी को आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज में। हसरत जयपुरी ने गीत लिखा है और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है। लीजिए सुनिए अंदाज फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए हमारे आप सभी श्रोताओं ने की है। सौंगा मगरलोड से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार पार्थ और हे अंश चंदन। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनाराम और कृष्णा देवांगन। धनौरी तेलीवारा से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान। कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्रकर, मुकुंद, पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर। खंडवा से अब्दुल हक डावर, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब, जिया उल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम कोलाम। चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने और निवृत्ति आड़ोकार। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केशु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू, रजनी और प्रियंका देवांगन। हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी। भिलाई से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता। नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं हाथी मेरे साथी फिल्म का गाना। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सरद, मयंक सुराणा, विमला भाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोनी जैन और प्रमोद दंभाणी, पदमपुर गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, कीर्ति भूमिका अरोड़ा, ममता अरोड़ा, चिरमेरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन, दिल्ली से सुमित्रा देवी, सोनिया देवी, आयशा रानी, दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा, हनुमान बोडखे और उत्तम जमदाड़े, सनावद से दिलीप मालाकार, सुनीता मुस्कान और योगेश मालाकार, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस और यशस्वी वर्मा, वर्णिंगहेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या राम टेकी। आप सभी ने फरमाइश किया है हीरा पन्ना फिल्म का गीत सुनवाने के लिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत है। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

वाशिम महाराष्ट्र से विठल सुरेशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरेशे, दिल्ली से सोनम सना और अदीबा, महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और महेश रामटेके, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल और कुणाल मेहरा, बुलढाणा वड़शंडी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय गजभिये, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, राजा, चैतन्य मस्कीन, नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, अश्विनी वर्मा, गणेशराम, ओमकारेश्वर से सपना, अंबिका, अनीता, चिंकी, मिंकी और पिंकी सैनी, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली क्षत्रिय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर। जानी दुश्मन फिल्म का गाना आशा भोसले और शत्रुघ्न सिन्हा की आवाजें हैं इस गीत में। वर्मा मलिक ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम जानी दुश्मन।

तो मेरा दिल भी जानता जरूर है कितनी तू मेरे पास है और कितनी तू दूर है।

चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु और रिधान खुराना, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, ग्राम उजभट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु आशीष शिवन्या गोस्वामी, पलारी से नीतीश कुमार, लखनलाल सावित्रीबाई, ईशांत और तनुजा दिवांगन, आमा खोडरा रेंगाखार से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह नेताम, दक्ष प्रिया गीत सरगम नेताम, पीपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, बिलाईगढ़ से रोशनलाल दिवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल दिवांगन, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सुहान, सर्वराज, फरदीन अरजान और अबान अब्बासी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, प्रकाश भानु, निशु दीदी, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी, लच्छनपुर बलौदा बाजार से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा और विनय शंकर पांडे। आप सभी ने फरमाइश की है ईमेल के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में रखवाला फिल्म का गाना सुनवाने का। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी, आनंद जी। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: और इसी गीत के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का यह पहला भाग पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। संध्या 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में बेरा के गुट का विषय होगा, योग से जुड़ें और मधुमेह का प्रबंधन करें। किसान वाणी कार्यक्रम में शाम 7:30 पर भेंट वार्ता के अंतर्गत सुनिएगा खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती अपनावा विषय पर श्री छत्रपति महिलांगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तखतपुर से पंचु भैया की बातचीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:00 हम आपको कलाकार अलीशा चिनॉय के गाये गीत सुनवाएंगे। रजनीगंधा कार्यक्रम हम पेश करेंगे 8:15 पर और विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 9:15 से। यह थी इस सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब एक नजर हमारे केंद्र से कल यानी रविवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर डालेंगे। उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कल यानी रविवार को हमारी प्रातःकालीन सभा में 6:30 पर सामयिक सुझाव का विषय रहेगा तिलहनी फसल की खेती। चिंतन कार्यक्रम में 6:45 पर स्वामी आत्मानंद का आलेख विकास

हमारे श्रोता सुन सकते हैं। आज सुबह कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 7:05 पर। श्रोताओं, प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत त्वचा रोग के संदर्भ में सेहत की बात डॉक्टर के साथ हम सुनवाएंगे 7:30 पर। कार्यक्रम मन की बात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 10:55 पर अनुप्रसारित करेंगे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे 7:40 पर। छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर श्रोता सुन सकते हैं 8:30 पर। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से 9:10 पर रिले करेंगे। हमारे नन्हे श्रोताओं का कार्यक्रम आओ बच्चों हम प्रसारित करेंगे 10:00, जिसमें सामयिक चर्चा का विषय रहेगा उष्णकटिबंधीय वन, धरती की हरियाली और हमारी जिम्मेदारी। नए तराने कार्यक्रम का समय रहेगा 10:30 पर। मन की बात कार्यक्रम 10:55 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का छत्तीसगढ़ी अनुवाद इसके बाद हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। कल संध्या 5:05 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा के गोट का विषय रहेगा किसान उत्पादक संगठन बनाए। इसके अलावा क्रम रहेगा आप मन के गीत। जिले की चिट्ठी ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे 6:05 पर।

श्रोताओं, महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल 6:30 से हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोताओं, मन की बात कार्यक्रम के छत्तीसगढ़ी अनुवाद का पुनः प्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रात 8 बजे रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया दू बच्छर मा देश भर के 500 शहर और कस्बा मन मा विस्तार करे जाही। पल्स पोलियो अभियान के तहत काली 28 जून के 5 बच्छर तक के लैका मल्ला पिलाए जाही पोलियो के खुराक। औ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मन ले करही अपन विचार साझा। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया दू बच्छर में देश भर के 500 शहर और कस्बा मन में विस्तार करे जाही। गुजरात में भारत टैक्सी के शुभारंभ करत हुए श्री शाह ये पहल ला सरकारी क्षेत्र में एक ठन क्रांतिकारी कदम बतेन। उमन कहिन कि भारत टैक्सी के उद्देश्य चालक मन ला सीधा लाभ पहुंचा के निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना हरय। श्री शाह डेयरी उत्पाद ले संबंध अमूल सहकारी अभियान के सफलता के घलो उल्लेख करें। प्रदेश में काली 28 जून ले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाए जाही। एकर तहत जन्म से लेके 5 बच्छर तक के 35,98,000 ले ज्यादा लैका मल्ला पोलियो के खुराक पिलाए के लक्ष्य रखे गए है। अभियान के संचालन पर 28,000 टीम मन के संग 57,000 ले ज्यादा वैक्सीनेटर तैनात करे गए है। अभियान के दिन छुटे हुए लैका मल्ला अवैया दो दिन तक आने यानी 29 और 30 जून के घर घर जाके खुराक दे जाही। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर वी आर भगत बतैन कि दूरस्थ गांव वनांचल क्षेत्र शहरी बस्ती ईटा भट्टी निर्माण स्थल और प्रवासी और घुमंतु परिवार मन तक पहुंच के लेका मल्ला पोलियो के खुराक दे जाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली

0: जून इतवार के आकाशवाणी के मन के बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मन ले अपन विचार साझा करही। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम के 135वां एपिसोड हो ही। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सब्बो चैनल AIR न्यूज के वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप में करे जाहे। संगे संग AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल मन में घलो एकर सीधा प्रसारण करे जाहे। हिंदी प्रसारण के तुरते बाद क्षेत्रीय भाषा में घलो कार्यक्रम के प्रसारण होही। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के 5 बच्छर पूरा होई ऊपर छत्तीसगढ़ में घलो 29 जून ले 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाए जाही। ये दौरान प्रदेश भर में सहकारिता ला बढ़ावा दे बर आने आने कार्यक्रम के आयोजन होही। रायपुर में अवैया 3 और 4 जुलाई के राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी के आयोजन करे जाही। इमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होही। सहकार मेला में सहकारिता क्षेत्र के उपलब्धि और सफल मॉडल मन के प्रदर्शन करे जाही। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता बतैन कि 6 जुलाई के केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह डहरले अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 ठन पैक्स मनमा गोदाम निर्माण काम के भूमि पूजन करे जाही। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून के नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के अध्यक्षता करही। 2 दिन के सम्मेलन में सब्बो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मन के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ मन समग्र ग्रामीण विकास ऊपर विचार विमर्श करे बर सकलाही। बैठक में प्रमुख परियोजना मन के समीक्षा और ग्रामीण भारत बर भविष्य के रूपरेखा तैयार करे ऊपर घलो विचार विमर्श करे जाही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हकीन है कि प्रदेश भर में वीर शहीद मन के स्मृति ला चिरस्थायी बनाए बर विशेष अभियान चलाए जाहे। एकर तहत गांव मन में सामुदायिक भवन, चौक चौराहा और दूसर सार्वजनिक स्थल मन के नामकरण शहीद मन के नाम में करे जाहे। संगे संग जिन जगह में नक्सल हिंसा के बड़े घटना हुए है वहाँ उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारक मन के निर्माण करे जाहे, ताकि अवैया पीढ़ी शहीद मन के सर्वोच्च बलिदान ले प्रेरणा ले सके। ये बात उमन काली कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवार और शहीद जवान मन के परिजन मन ले मुलाकात के दौरान कहीं। उन्हें उप मुख्यमंत्री है नारायणपुर में पुनर्वासित युवा मन ले घलो मुलाकात कर उनला गांव के विकास में भागीदारी निभाए के आह्वान करीन। ये दौरान उमन युवा मन ले पुनर्वास केंद्र में मिलत सुविधा, प्रशिक्षण और रोजगार के जानकारी लीन। उमन जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज के बैठक में घलो शामिल हुईन और समाज के लोगन मन ले माओवाद मुक्त बस्तर के नव निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए के आह्वान करीन। उन्हें उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा हा कांकेर जिला के ग्राम किसकोड़ो में जन चौपाल लगा के ग्रामीण मन के जन समस्या ला सुनीन। उमन कहिन कि किसकोड़ो ला आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल मा घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आप गुबाड़बो बाती समाचार को ती। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा आज सुकमा जिला के जगरगुंडा, चिंतलनार, पुवर्ती और सिलगेर के दौरा करीन। ये दौरान उमन पुवर्ती और सिलगेर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र मन के निरीक्षण करीन। संगे संग अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होके महिला मन ले चर्चा करीन। श्रीमती राजवाड़े हा सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्के पारा छिंदगढ़ के पोषण क्वाटिका मालिका मन के संग मुनगा और पपीता के पौधा लगाइन। ये मौका मौमन हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण के संदेश देवत हुए पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता के आह्वान करीन। महासमुंद जिला के बलौदा बाजार बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन लले के तैयारी तेज हो गई है। NMDC, CMDC लिमिटेड के निदेशक मंडल के नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ये परियोजना के अवैया चरण में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करे के निर्णय

0: लेगे है। ये निर्णय ये क्षेत्र में हीरा के वास्तविक भंडार के वैज्ञानिक आकलन कर ही और भविष्य में व्यावसायिक हीरा खनन के मार्ग प्रशस्त कर ही। निर्णय के अनुसार बड़े व्यास के ले किम्बरलाइट पाइप में मौजूद हीरा भंडार के सटीक आकलन करे जाही। एक बाद फिजिलिटी रिपोर्ट तैयार हो ही जेखर आधार में व्यावसायिक हीरा खदान विकसित करे के अंतिम निर्णय ले जाही। प्रदेश में रबर टायर के बिना आयरन केज व्हील वाला ट्रैक्टर मन के सड़क में संचालन ऊपर रोक लगाए गए है। परिवहन विभाग नियम मन के उल्लंघन करैया मन ऊपर चालानी कार्रवाई के निर्देश दे है। ऐसन पहिया मन के उपयोग सिर्फ खेत में किसनहा काम बार करे जा सकत है। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप बर ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कर देगे है। ये योजना के तहत एमटेक डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेवैया चयनित विद्यार्थी मल्ला हर महीना 50,000 रूपया फेलोशिप दे जाही। ट्यूशन फीस के पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर ही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहाल ने प्रस्तुत कार्यक्रम जिला की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही। ए बखत के अंक में जसपुर जिला के बारे में जानकारी दे जाही। अब पे से मौसम के हाल। मौसम विभाग अवैया 3 दिन के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में भारी वर्षा होने की संभावना जताये है। उन्हें कुछ एक जगह में गरज चमक के संग गाज गिर सकत है। पाछू 24 घंटा के दौरान राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक हिस्सा में हल्का ले मध्यम वर्षा दर्ज करेगी। यही बीच मौसम विभाग कहिन है कि अवैया 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ समेत गुजरात मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ एक क्षेत्र में आगू बाढ़े के परिस्थिति बने हुए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गो फेर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कहिन है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के अवैया 2 बच्छर में देश भर के 500 शहर और कस्बा मन में विस्तार करे जाही। पल्स पोलियो अभियान के तहत काली 28 जून के 5 बच्छर तक के लैका मल्ला पिलाए जाही पोलियो के खुराक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली 28 जून के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगन मल्ले कर ही अपन विचार साझा। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का अगला भाग। और पहले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए हमें आप सभी ने की है। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार जोई, यामिनी और उमा तिवारी, हरहरपुर मटकली बरेली से शाहरून नूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वेश डैनी और डीजे प्रधान, जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा, बीड शहर से किसन सपकाल, आशा सोनिया और विशाल सपकाल, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू, कोल सिटी बरकाकाना से अब्जाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल मलिक, अड़ारनाथ घाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, भिलाई 3 चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जीशान अहमद सिद्दीकी, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, पजौनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, बोरीखुर्द से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, साक्षीताई राजे जाधव, गांव सुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, जालंधर से हैं रोशन जहां, नुसरत जहां और मन्नत जहां। आप सभी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं आपको सच्चा झूठा फिल्म का गीत सुनवाकर। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इसे गाया है, कमर जलालाबादी ने लिखा है इसे और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई है। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हल्दीवा इंडिया। शुद्ध शहद ए टू बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
1: झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक भाटिया, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता हर्ष, विनीत और कृष्टि पटवा, भानबेड़ा मुंगवाल से भारतराम पडोटी, जयंती हेमंत, उमंग और मोक्ष पडोटी, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथलेश और तारिण ठाकुर, दतरेंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर वर्मा, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, वैशाली श्वेता, सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डठी, केश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, दिल्ली से मालती शर्मा, माया शर्मा, दिव्या और सीमा शर्मा, हेमदेव नैला बुड़सरा जांजगीर से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन।

मीनाक्षी, उमाबाई और विष्णु प्रसाद तिवारी, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना, भाटापारा से हिंकेश्वर साहू, करण राहुल और चंपा साहू, बड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं राजकुमार फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है और शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए आप सभी ने की है। लूत्रा खमरिया से अक्रम अमीन अर्श और आतिका, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल और भारती बघेल, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर और नारायण यदु, आप सभी हैं नालगोंडा तेलंगाना से मोहम्मद अमजद, सलमा फिरदौस, मुनीर उन्निसा और अयेशा तबस्सुम, धुर्राबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव सानित्राम और भूपेंद्र साहू, लुतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, जिला भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया और निकिता, दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहज श्लोक प्रियांश श्रेयांश और अनुभूति अग्रवाल, बठेना पाटन जिला दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, रेखा, पार्थ कश्यप, मिथलेश, टॉमिन बंछोर, यश प्रयाण और शिवम वर्मा, दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा और डब्लू अंसारी, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी और अफजल मलिक, करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमराद अहमद फुलवाले, आमना नसरीन बागवान और आसमा फरी, राबिया और आशु अहमद फुलवाले, गिरिडीह झारखंड से हैं साइमा नवाज, मोहम्मद यासीन अंजान, हसन नवाज, अहद मिफरानाज, चाहत और सादिया। आप सभी ने फरमाइश किया है फर्ज फिल्म के गाने का, जिसमें आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा अनस और रेहान, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, मुरादाबाद दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहनी, मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुनावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप, गुरलाल, अविराज सिंह, गुरनूर और शुभदीप सिंह, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, पंढरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता यशराज, ऋषि सिंधे और कृष्णा घोड़के, महसौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस, इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा और पूनम शर्मा, लसुड़िया पाता राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या कुमन सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद साहिद, अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, धनंजय कटनकर, सहारनपुर से सोनाली नारंग, आशा सुरेश नारंग, पथिव और कृष्ण और भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी रावत, शुभम और सौरभ रावत, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ, प्रियंका, पूजा, लिलू और रितु सिंह। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको महेंद्र कपूर की आवाज में फकीरा फिल्म का गाना, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। सुनते हैं आप सबके अनुरोध पर ये गीत।

और फकीरा फिल्म के इसी गाने के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद विज्ञापन और प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने

0: मंदी की बात ये रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर।

अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांव में सामुदायिक भवन, चौक चौराहों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों का नामकरण शहीदों के नाम पर किया जाएगा। साथ ही जिन स्थानों पर नक्सल हिंसा की बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहां उपयुक्त स्थान चिन्हित कर स्मारकों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के सर्वोच्च बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। उन्होंने कल कांकेर में नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। वहीं उप मुख्यमंत्री ने नारायणपुर में शहीद परिवारों और नक्सल पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने पुनर्वासित युवाओं से भी मुलाकात की और उनसे गांव के विकास में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित सर्व आदिवासी समाज की बैठक में भी शामिल हुए और समाज के लोगों से माओवाद मुक्त बस्तर के नवनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री ने कोंडागांव जिले के ग्राम मर्दापाल स्थित कन्हार गांव में साप्ताहिक बाजार पहुंचकर ग्रामीणों, व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र की आवश्यकताओं और जनजीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कांकेर जिले के ग्राम किसकोड़ो और बोड़गांव स्थित CAF कैंप में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में कल 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 35,98,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अभियान के संचालन के लिए 28,000 टीमों के साथ 57,000 से अधिक वैक्सीनेटर तैनात किए गए हैं। अभियान के दिन छूटे हुए बच्चों को अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 जून को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ VR भगत ने बताया कि दूरस्थ गांवों, वनांचल क्षेत्रों, शहरी बस्तियों, ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों तथा प्रवासी और घुमंतु परिवारों तक पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में भी 29 जून से 6 जुलाई तक सहकारिता सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। रायपुर में आगामी 3 और 4 जुलाई को राज्य स्तरीय सहकारी चिंतन शिविर, सहकार मेला और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सहकार मेले में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियों और सफल मॉडलों का

0: दर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता ने बताया कि 6 जुलाई को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा अन्न भंडारण योजना के तहत प्रदेश के 9 पैक्सों में गोदाम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा।
1: 5 वर्ष सहकारिता विभाग के पूर्ण होने पर सहकारिता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जो 29 जून से प्रारंभ होगा और 6 जुलाई तक चलेगा। इसमें विविध कार्यक्रम होंगे। 6 तारीख को माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा छत्तीसगढ़ में 9 बड़े गोदाम जो दिए गए हैं उनका वर्चुअली भूमि पूजन होगा और 7 दिन 2058 पैक्स में सारे जिला बैंकों में, सारे जिला मत्स्य बैंक और जितने भी वनोपज संघ है, बुनकर संघ है, दुग्ध संघ है, एनसीडीसी है, एनसीसीएफ है, नेफेड है, इफको है, क्रिपको है, राज्य सहकारी संघ है, सभी संगठनों में पूरे 7 दिन तक बड़े कार्यक्रम होंगे।
0: महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा, चिंतलनार, पूर्ववर्ती और सिलगेर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती और सिलगेर स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया, साथ ही अन्नप्राशन और गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं से चर्चा की। श्रीमती राजवाड़े ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र लस्केपारा छिंदगढ़ की पोषण वाटिका में बच्चों के साथ मुनगा और पपीता के पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने हर घर मुनगा, घर घर सुपोषण का संदेश देते हुए पौष्टिक आहार, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता का आह्वान किया। वहीं श्रीमती राजवाड़े ने बीजापुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि माओवाद मुक्त बीजापुर अब विकसित बीजापुर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचार की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। महासमुंद जिले के बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में हीरा खनन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। NMDC CMDC लिमिटेड के निदेशक मंडल की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में इस परियोजना के अगले चरण में लार्ज डायमीटर ड्रिलिंग शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री IT फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। इस योजना के तहत MTech, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रति माह 50,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। प्रदेश में रबर टायर के बिना आयरन केज व्हील वाले ट्रैक्टरों के सड़कों पर संचालन पर रोक लगाई गई है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऐसे पहियों का उपयोग केवल खेतों में कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर द्वारा आज जगदलपुर में वार्तालाप मीडिया संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और उपलब्धियों का लेखा जोखा साझा किया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की कल्याणकारी नीतियों से बस्तर नक्सलवाद के अंधेरे से निकलकर विकास और विश्वास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों के सतत परिवर्तन के लिए शिक्षा और विकास दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बने हुए हैं। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद महेश कश्यप ने कहा कि

बस्तर के आदिवासियों के सामाजिक उत्थान, सुरक्षा और सतत विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा बस्तर में विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा की। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जशपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। बीते 24 घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ सहित गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जांजगीर चांपा के बहेराडीह में स्थित वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में राज्य स्तरीय मशरूम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें जांजगीर चांपा सहित विभिन्न जिलों के मशरूम उत्पादक किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। महासमुंद जिला पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर रेहटी खोल के पास नाकेबंदी कर ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रही एक कार से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 25.5 लाख रूपये बताई गई है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर एक कंपनी के अधिकारी के साथ 20,70,000 रुपए ठगी होने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में वीर शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 28 जून को 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। कार्यक्रम के इस भाग के पहले गीत की फरमाइश आप सभी ने ईमेल के जरिए की है। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा आरती और प्रभा देवी तामुरिया। दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद और सोनल जाधव। बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक और आर्यन वर्मा। जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख रहीम मुन्ना। भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम और धनराज मरकाम। मलौट पंजाब से राज शर्मा, योगेश, मीना, निवान, सौरभ, साइना और मैंडी शर्मा। रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, जयतेग वीरक, बलविंदर और मीका वीरक। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता, गौरव सैनी। बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू। पोड़ीभाटा कलतरा से दिलीप चंदन, चोआराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। आप सभी की फरमाइश है दुश्मन फिल्म का गीत सुनवाने की। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं इस गीत में। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं दुश्मन फिल्म का ये गाना।

0: हल्दीवा इंडिया।
1: हल्दीवा का सम्मान है
0: शुद्ध शहद एटो बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास। हर दिल में भरोसा, हर घर में हल्दीवा। अपने नजदीकी स्टोर पर पूछिए अब हर घर की सेहत और शुद्धता का नया भरोसा हल्दीवा इंडिया।
2: कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश आप सभी ने की है जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित और गर्वी चौहान गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार और पूजा खटक बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता श्रीवास रज्जन साहू हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद और गौरव मंदूरकर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर सरला विशाल चेतन रोशनी मनवर प्रियांशी देगलूर नांदेड़ से संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे ललिता गणेश कार्तिक परी खुशी वंदना खर्चे स्वाति प्रयाग चौधरी पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ चंद्रकला रेवाड़ गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन प्रभा देवी लक्की विक्की नानू रविंद्र और रौनक सेन फजिलका पंजाब से भूषण खेरा विश्व विशाल आरबी तिवानसी शालिनी खेरा जीवन बुक और लड्डी खेरा बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति रामचरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। आप सभी ने फरमाइश किया है दीवाना फिल्म का गीत सुनना चाहा है कुमार सानू की आवाज में समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

और अब कार्यक्रम के इस अंक के आखिर में सुनते हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश। आप सब हैं जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा और आदित्य देवांगन, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, कोलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुंभार, हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा, ओवरैठीपारा भाटापारा से अनिता साहू, वीणा, नेहा और मोनिशा साहू, लालपुर मारो से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी और निशांत ध्रुव, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार, ग्राम खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा, सोमारसाय कलेश्वर सिंह, सुखराम और हीरामणि पैकरा, निम्नामाद जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर, बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, जालंधर से रोशन जहां, नुसरत जहां और मनत जहां, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना और चेतन भगत। आप सभी ने सुनना चाहा है तीन देवियां फिल्म का गाना। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत है। मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा है इस गीत को और SD बर्मन ने धुन बनाई है। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर ये गीत।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम का ये अंतिम भाग पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 7:20 होने वाले हैं। और अब आइए चलते हैं ग्रामीण श्रोता बहनों और भाइयों के मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा में।

ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगी संगवारी दाई दीदी भाई बहनी मल्ला चैतू भाई के राम राम जय जोहार। संगी हो आ थोर कन पानी गिरीस बड़ा बढ़िया लगीस भाई। देखो हम सब बूता काम में एकदम तैयारी करके रखे हैं अपन खेती बाड़ी के, है ना। फिर संगवारी हो खेती बाड़ी के बूता तभी बढ़िया ढंग ले हो है जब हमार शरीर बढ़िया रही। कहे के मतलब ये है कि कोनो भी बूता ला सही बेरा में सही ढंग ले करे बर शरीर के स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर ला स्वस्थ रखे के आनी बानी के तरीका है, जेमा एक बहुत बढ़िया तरीका है वो है योगा और प्राणायाम। नियमित रूप ले योग के अभ्यास ले शरीर ला बहुत हद तक आनी बानी के हो या बीमारी ले बचाया जा सकत है संगवारी हो। और कतको जन मन कही थे के योग प्राणायाम करे ले शरीर में बीमारी नहीं रहे या रही थे तेना खत्म हो जाते, तो ये है योग के बहुत छोटे परिभाषा है। वो तो ऐसे है कि बहुत कम फल है ओखर, वास्तव में योग के जो ओखर परिणाम है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है। योग ले मन शरीर बुद्धि चित्त अहंकार हर चीज नियंत्रित हो जाते, शुद्ध हो जाते, स्वस्थ हो जाते। तो योग करना बहुत जरूरी है। आजकल आनी बानी के बीमारी हमन देखत हन शरीर में, सबले ज़्यादा बीमारी हमन सुनथन के ओला मधु शुगर हो गए, ओला बीपी हो गए। शुगर बीपी

हम पहिले सुने बर नहीं पात रहे नान ना रहन त गाँव में कोनो कही देना है कि दो बाबू ल अमुक शहर में सुगर हो गए हे, तो डोकरी दाई मन कहे ये जो सुगर है बीपी है शक्कर के जो बीमारी है ये है शहर वाले मन भरे बड़े आदमी मन भरे जिमन के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तिखर है ऐसे कही के वो मन ना हंसी मजाक करे। फिर आज हमन देखत हन ये शुगर के जो बीमारी है बीपी के जो बीमारी है संगवारी हो यह न तो गांव चिन्ह है न शहर चिन्ह है न बड़े आदमी देखे न गरीब आदमी देखे। जानकार मनखे मन ये कही थे कि सही मायने में जिन बीपी है शुगर के ये जो रोग है मधुमेह के जो रोग है यह लाइफ स्टाइल के परिणाम एक थे। कहे के मतलब जैसे दिनचर्या है जैसे जीवन शैली है उखर कारण से ये शुगर और बीपी की बीमारी होते। तो यदि गलत खान पान है गलत जीवन शैली है खराब लाइफ स्टाइल है तो बोला सुधारे के बाद ये बीमारी खुदे ले ठीक हो जाते। संगे संग में अगर योगा और प्राणायाम चलत है सुबह शाम टहले के काम चलत है निश्चित तौर ले ये जो बीमारी है वो ठीक हो सकत है। एकर लिए योग ला अपनाना बहुत जरूरी है। संगी हो नियमित योगा अभ्यास करे ले शरीर के जो अंतःस्रावी ग्रंथि है जेकर से हार्मोन्स बनते अलग अलग जिन मन बीमारी मन ला नियंत्रित करते वो हार्मोन्स जो उन्हें बहुत बढ़िया संतुलित रूप ले बनते। हम आजकल देखथन चाहे गांव है कि शहर है खाना बहुत देर रात तक के खाते 11 बजे 12 बजे तक सूता थे 12 बजे 1 बजे। अब यही सब कारण से का है बहुत ज़्यादा शरीर के जो बैलेंस है वह गड़बड़ा जाते तहाँ कतेक ले झेले आखिर वह शरीर है त्वे भाई। संगे संग में आजकल बहुत ज़्यादा चिंता तनाव यू कारण है बीमारी मन ला बुलाए के। तो प्रसन्न रहना जरूरी है और मैं आप ला ये बता दूँ अपन अनुभव से जौन मनखे मन है योग करते प्राणायाम करते उमन ला गुस्सा भी बहुत कम आते जीवन संतुलित हो जाते मन शांत होए लगते। काबर के योग के प्रभाव में पहली भी बताया हूँ कि केवल शरीर बस मनी पड़े योग के प्रभाव मन मस्तिष्क में चित्त में अहं बुद्धि में अहंकार में सब में पड़ते। विशेष रूप से अगर कहे जाए तो योगाभ्यास में मधुमेह वर भी करना है मधुमेह के कोनो बीमारी है शुगर के कोनो बीमारी है वो व्यक्ति अगर कोई योगासन करना है तो मुख्य रूप से मंडूकासन कपालभाति प्राणायाम अर्धमत्स्येंद्र आसन धनुरासन वज्रासन ये जो योग है प्राणायाम है एकर सलाह जानकार मन देते। संगे संग यहू बताए हैं कि शक्कर है मैदा है ज़्यादा चावल है एकर प्रयोग कम करना चाहिए देर रात तक जगे ले बचना चाहिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मोबाइल में एक जगह बैठ के बहुत देर तक के काम नहीं करना चाहिए। काय देर रात तक के खाना खाए से तनाव चिंता मोबाइल कंप्यूटर ये सबसे और शारीरिक मेहनत नहीं करे ले ये सब जो बीमारी है वो तो होबे करिए। तो संगवारी हो हम तो यही कहबो कि जो उन जानकार मन कही थे कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए कहे के मतलब दिनचर्या जीवन शैली ला बढ़िया बनाइए। जरूर आप घूमे के सुबह सुबह अभ्यास बनाओ प्रसन्न रहे के अभ्यास बनाओ तनाव चिंता से दूर रहे के अभ्यास बनाओ खबर हूँ ना अभ्यास चे कतको आदमी देखिए आप कतको तनाव में है कतको डिप्रेशन में है कतको दुख में है लेकिन एक मुस्कुराहट उखर मरी ही बोल पता नहीं चले लोगन ला कि वो तनाव में है कि डिप्रेशन में है। तो ये भी एक अभ्यास है खुश रहे के लिए आस पास में खुशी वाले चीज ला ढूंढना पड़े। अगर हम तनाव में ज़्यादा ध्यान देवो तो तनाव हुए खुशी में ज़्यादा ध्यान देवो तो तनाव कम हो खुशी ज़्यादा हो है ये खुशी और तनाव के बाद हमार हो है आगू आऊ फिर संदेश मतलब सुन लेता।

0: हल्दीवा इंडिया,
1: हल्दीवा का सम्मान है।
0: शुद्ध शहद एटू बिलोना की कच्ची घनी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास। हर दिल में भरोसा, हर घर में हल्दीवा। अपने नजदीकी स्टोर पर पूछिए।

0: घर की सेहत और शुद्धता का नया भरोसा हल्दीबा इंडिया।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: संगी हो हमन बात करत रहे तनाव मुक्त रह के और योग अभ्यास से जिंदगी ला सुखमय बनाए के, तो एमा सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुआ थे कि खाना पीना के विशेष चेत करना पड़ते। खाना जो उन्हें घर के बने होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आजकल सबसे ज्यादा पाकिट में भराए भराए वाले जिनिस के खान पान बढ़ गए हैं। लइका मन ल देखी है तबो इसने हैं, और आजकल लइका मन का अब ले न लइको बर बनाए हो तो सियानों मन खा लेते हैं। कहे का मतलब ये है, जितका हो सके पाकिट बंद वाले जो जीनिस है ओला कोशिश करना चाहिए जितना कम हो सके उपयोग करिए। संगे संग हमर घर में जो हम खान पान बनाथन वहू बढ़िया मौसम के हिसाब में, और जन हमर दीदी हैं बहनी हैं वो मतलब विशेष चेत करना चाहिए। खास करके उमन गृह मंत्रालय विभाग अपन घर के देखते हैं तो कौन प्रकार के मौसम में कौन प्रकार के सब्जी घर में आना चाहिए और कैसे बनना चाहिए, ये सब के उमन चेत करना चाहिए। काबर के उमन हाँ घर के धूरी होते हैं, रीढ़ के हड्डी जी से है हमार, उसने उमन घर की धूरी है। उमन अगर समझदारी से काम करी तो निश्चित तौर से शरीर स्वस्थ रही, परिवार स्वस्थ रही, खुशहाल रही। आवा बेरा होते चली किसानवाणी कार्यक्रम के ढेर।

किसान वाणी कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगी संगवारी दाई दीदी भाई बहनी मल्ला चैतू भाई के राम राम जय जोहार। संगवारी हो, एक बहुत सुंदर पंक्ति आप मन बार बार सुने हो, रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। संगी हो, ये बात ओहू समय 100% सही रही से आजो 100% सही है। काबर के बिना पानी के जिंदगी के जिंदगी के कल्पना नहीं कर सकन। पानी के बिना हमन के पूरा विकास धरे के धरे रह जाए। कहे के मतलब ये है, जेन चीज ला हम बनाए नहीं सकन, हमर बस ले बाहर है कि ओला हम बना सकी, तो एक विकल्प बच जाते कि ओला हम बचाई ओखर संरक्षण करी। तो भाई उपयोग तो करने हैं, उपयोग नहीं करना नहीं कर सकन, लेकिन बहुत कन ऐसे है जेला हम उपयोग के बाद फिर दोबारा उपयोग कर सकते हैं पानी के। जैसे घर में पोछा लगाथन, घर में कपड़ा छोड़ाथन, ये पानी घर के गमला में घला डाले जा सकते। एकर ले गमला है घर में, जो अब हम बारी में पलिया बनाए हैं धनिया के मिर्चा के मेथी के, वह में पानी डाले जा सकते। एकर से फायदा हो है कि पानी के उपयोग दुपैत हो जाए। और संगी हो, सही मायने में आपो मन चेत करके देखा, जिहाँ पानी के किल्लत है ओ मन ला पता है कि पानी कहाँ है ओकर किल्लत कहाँ होते। ऐसे ना हो कि वो किल्लत हमूल झेले पड़े और समस्या आए के पहले ही समस्या के प्रति सचेत हो जाना, ओकर ले निपटे के उपाय कर लेना, ये समझदारी की बात है। जैसे पानी गदगद गदगद अभी बरसात में गिर ही और नाला नाली ले होते हुए नदी होते हुए फिर तहाँ समुद्र में जाके मिल जाए, तो जौन छत ले पानी गिरते ओला हम सहेज के रख सकथन, बोर में अपन मिला दी। अगर सब आदमी इसे करें तो निश्चित है भूमिगत

0: जल के स्तर तक वो बढ़े। कहेक मतलब पानी ले ही जिनगानी है और पानी बचाना जरूरी है, काबर के कहे भी गए हैं बूंद बूंद पानी हमर जिनगानी। संगी हो एक बहुत बढ़िया बात आजकल हमन सुना थन बोला थन और आपोन सुना था खेत बचाओ अभियान के तहत के हमला प्राकृतिक खेती अपनाना है। तो आओ भेंट वार्ता में आज यही विषय के अंतर्गत प्राकृतिक खेती अपनाना है। ये विषय में गुड़ बात सुनथन जेमा जानकारी देवत हैं श्री छत्रपति महिलांगे ग्रामीण विकास अधिकारी तखतपुर जिला बिलासपुर ले इखर सो गुड़ बात करे हैं हमार पंचू भाई मन आवचेत लगा के एला सुनथन।
1: संगवारी हो राम राम जय जोहर। मैं हूं अपन के रेडियो संगवारी पंचू भाई रुपेश कुमार कंवर। खरीफ फसल में हमारे किसान भाई मन हमार खेती किसानी के तैयारी में लग चुके हवन। जे किसान भाई मन करा पल्लो के साधन हवा पानी के साधन है ओमन अभी 15 दिन पहली अगाहू अपन खेती किसानी के जो बुता काम है ओला अगवा के करत हवा। कतेक किसान भाई मन अभी भी खेती की जो तैयारी हवा बीजा भात खातू माटी के तैयारी में लग चुके हैं। बात करी संगवारी हो का करथन हमन कई बच्चर ऐसे हो रही से कि हमन फसल के ज्यादा लालच में आनी बानी के रासायनिक कीटनाशक दवाई की छिड़काव करत रहे। ओकर से फायदा ये होत रही से कि हमर जो फसल है ज्यादा उपज हो लेकिन ओकर कहीं कहीं आज बुरा प्रभाव हमला अपन खेती किसानी के संगे संग हमर जो शरीर है हमर जो सेहत है ओकर ऊपर देखे मिलत है। भूया की उपजाऊ क्षमता दिनों दिन घटत जाता हुआ संगे संग हमर जो शरीर में कई प्रकार के आनी बानी के बीमारी घलो पनपत हवा। कारण यही हवा कि हमन आए दिन अंधाधुन ज्यादा फसल के लालच में आनी बानी के रासायनिक कीटनाशक है रासायनिक खातू माटी है ओकर छिड़काव करत हन। सरकार खातिर आनी बानी के योजना घलो चलात हवा कि हमन कैसे भूया की उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकी कैसे पानी के नमी बढ़ा सकी कैसे हमन जैविक खेती डहर बढ़ा सकी। संगवारियों यही क्रम में आज हमर बीच में पहुना हवा छत्रपति महिला ने कृषि विस्तार अधिकारी तखतपुर के आवा गोड बात करी कि खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती ला कैसे अपनाई हमन। तो सबसे पहले महिला ने जी आपन के स्वागत करते हैं। राम राम जय जोहर।
2: राम राम जय जोहर भैया।
1: केंद्र सरकार कति ले खेत बचाओ अभियान चलाए जाते और संगे संग में प्राकृतिक खेती ला हमला अपनाना हवा कहके सबसे पहले ये बताता प्राकृतिक खेती होते का एला आप बताता हमारे किसान भाई मन ल।
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन करे है भैया आप मन। प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित और स्थानीय रूप से हमर पास उपलब्ध संसाधन पर आधारित खेती है। एमा हमन कोई प्रकार के रासायनिक खाद कीटनाशक के उपयोग नहीं करन। प्राकृतिक खेती हर पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा यानी एक बार ऐसे रिस्क देव कि हमर जो जुन्ना बेरा में खेती करत रिस्क देव।
2: बिल्कुल
1: हाँ वही खेती ला दोबारा हमन अभी प्रयास करबो ताकि हमर जो भूया के उपजाऊ क्षमता बने रहे
2: बने रहे।
1: जानना ये चाहबो कि आपका खेत बचाओ अभियान एला कथे का और संगे संग जानबो हमारे किसान भाईमन कौन प्रकार से एला बताता आप।
2: बहुत अच्छा क्वेश्चन करे है पंचू भैया। देखा अत्यधिक रासायनिक उर्वरक और अत्यधिक केमिकल पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग में हमर धरती माता हर जेमा हमन फसल उगाथन ओ हर बीमार होते जाते और ओकर उर्वरक शक्ति कम होते जाते। तेकर बर हमर प्रधानमंत्री जी हर खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून 2026 तक खेत बचाओ अभियान पूरा देश में चलाते।
1: अच्छा अच्छा
2: एमा गांव गांव तक कृषि वैज्ञानिक और राज्य शासन के अधिकारी जन प्रतिनिधि एवं जन नेता गांव में जाही और संतुलित उर्वरक अपन खेत में कतका डालना है
1: अच्छा,
2: एला बताही और नकली दवाई ला पहचान करे बर बताही। जब खेत बची तभी आने वाला पीढ़ी के भविष्य बची तथा प्राकृतिक खेती के ओर बढ़बो यही खेत बचाओ के मुख्य उद्देश्य है पंचू भैया।
1: अच्छा अच्छा अच्छा बहुत अच्छा जानकारी बताया अपन प्राकृतिक खेती को हमारा बढ़ाना हवा।
2: हमन देखा थन पिछले कई वर्षों से हमारे खेती महंगा और लाभ कम होते जाते।
1: अच्छा अच्छा
2: हमारे किसान के पैदावार के कमाई के आधा हिस्सा तो खाद दवाई बीज खरीदी में चले जाते। रासायनिक खेती में हमारे वातावरण पर्यावरण प्रदूषण तथा खेत के उर्वरक क्षमता साथ में हमर मनुष्य एवं जानवर मन के सेहत पर विपरीत प्रभाव भी पड़त है। तेकर बचाव बर प्राकृतिक खेती अपनाना है। अब प्राकृतिक खेती वो होते पंचू भैया देसी गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित और स्थानीय रूप से हमर पास उपलब्ध संसाधन पर आधारित खेती है। एमा हमन कोई प्रकार के रासायनिक खाद कीटनाशक के उपयोग नहीं करन। प्राकृतिक खेती हर पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है।
1: अच्छा अच्छा, ऐसे कही मतलब कि अगर हमन खेती किसानी करत हन, अगर घर में दो चार गाय गरुवा नहीं रखबू तो हमारे खेती के बूता काम अधूरा है।
2: अधूरा है बिल्कुल।

0: तो एक संगे संगे हमारा का पशुपालन कति चेत घलो करे ला कि
1: बिल्कुल करना पड़े
0: तभी हमन प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ला बढ़ावा देबो
1: कि बिल्कुल बिल्कुल
0: प्राकृतिक खेती हमन कैसे करबो कोन ढर से शुरुआत करी एला बताता।
1: हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन करे हा। प्राकृतिक खेती में उर्वरक के जगह हमन हरी खाद के उपयोग करबो, नील हरित शैवाल जे लकाई बोलथन के उपयोग करबो, गोबर खाद वर्मी खाद के उपयोग करबो और कीड़ा मकोड़ा जीवाणु पौध संरक्षण पर भी हमन बीजामृत निमास्त्र ब्रह्मास्त्र के उपयोग कर सकथन भैया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आप बताए हरियर खाद जला ढेंचा कथन हमन, तो अगर हमन किसान भाई मन हरियर खाद के उपयोग करत हवे तो कैसन हा भुइया में एक एकड़ भुइया में हमन कते कन हरियर खाद के उपयोग कर सके और संगे संग मूंग के उपयोग करथन का हमन?
1: बिल्कुल बिल्कुल करथन पंच।
0: हाँ तो बताता अपन।
1: देखा भैया एमना हरी खाद तो सबसे पहले हमन तो जानबो हरी खाद का होते।
0: अच्छा अच्छा,
1: हरी खाद वो होते जेला हमन खेत में उगाबो, जैसे ढेंचा सनई मूंग लफीर 40 से 45 दिन बाद फूल आए से पहले अवस्था में खेत में जोताई करके पलट देथन।
0: अच्छा
1: और मिट्टी में अच्छा से मिला के सिंचाई करथन, सड़ गल के यहाँ खाद बन जाते, यही ला हरी खाद बोलथन हम।
0: अच्छा अच्छा, जैसे कि हमन मताई करथन तो आज मताई करथन उकर बाद हमन रोपाई कतेक दिन बाद करना चाहिए एला थोड़ा और बताता अपन।
1: बिल्कुल, आज मताई करथन ता कम से कम ओला 3 से 4 दिन पानी भर के रखबो भैया, तो जो हरी खाद रही डंठल पत्ता उत्ता उहर सड़ जाही।
0: सड़ जाएगी,
1: ओकर बाद ना हमन रोपाई करबो,
0: नीम का खातु बन जाएगी।
1: बिल्कुल नीम का खातु बन जाही।
0: कुछ भी बुता काम करथन तो अगर कुछ न कुछ एक फायदा रहते उद्देश्य रहते हैं उसे नहीं बताता कि हरियर खाद के फायदा का हवा है, ढेंचा के फायदा का है, इला थोड़ा आप मन विस्तार से बताता ताकि हमारे जो किसान भाई मन अभी सुनत हवा तो उहू मन अभी बेरा में हरियर खाद के उपयोग करी ताकि हमन जितका भी रासायनिक खाद मार के उपयोग करथन ओकर उपयोग ले हमन कम कर सके।
1: बिल्कुल आप मन सही क्वेश्चन करे हा। हरी खाद के उपयोग करथन ता हमन ला बहुत फायदा होते। सबसे पहला हरी खाद हमर जमीन के मिट्टी ला नरम भुरभुरा और उपजाऊ बनाते।
0: अच्छा अच्छा,
1: और ऐसा ही हरी खाद हर पर्यावरण पर सुरक्षित और टिकाऊ होते। और तीसरा है हरी खाद फसल के उत्पादन ला बढ़ाते, रासायनिक खाद के जरूरत ला घटाते, हरी खाद मिट्टी के उर्वरता ला बढ़ाते।
0: अच्छा अच्छा,
1: यही फायदा है हरी खाद के मुख्य फायदा भैया।
0: जैसे अभी बात करते हमन खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत, खेत तभी बची जब हमन अपन रासायनिक खातु माटी के उपयोग ला कम करबो। बात करते हन खेत बचाओ के अंतर्गत तो आपन कर जानना ही चाहबो कि हरियर खाद के बारे में बताए अभी आपन तो एक बीजा कहाँ ले मिलही और बीजा के संगे संग जो आजकल बाजार में नकली बीजा घलो आते तो हमारे किसान भाई मन कैसे पहचान करे कि ढेंचा के बीजा है असली हवा कि नकली हवा है, एकर कौन जगह में हमने एकर अच्छा से जो अपन देसी किस्म हवा है वो जगह बताता किस्म बताता।
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करे पंचू भैया। हरी खाद के बारे में बोला था कि बीज कहाँ मिली, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग के माध्यम से 50% अनुदान में ढेंचा और मूंग के बीज मिला थे।
0: अच्छा,
1: जेमा 8 किलो ढेंचा बीज रही और 4 किलो मूंग के बीज रही, ये दोनों मिला के प्रति एकड़ के दर से ला खेत में डालना है।
0: अच्छा अच्छा,
1: 50% अनुदान में लेकर कीमत है दोनों के 1163 रुपए होते। ये ला अपन क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करके किसान मन एक लाभ ले सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ये प्रकार से अगर हम किसान भाई मन जो कृषि विस्तार अधिकारी है या तो जो लखठा में कृषि विभाग के अधिकारी है वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं।
1: बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, आधा कीमत में मिल जाएगी।
0: अच्छा, और संगे संग अगर हम कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करबो तो वहाँ भी मिल जाएगी।
1: वहाँ भी मिल जाएगी।
0: अच्छा, जितका भी सरकारी अपन जो कृषि के संबंधित कार्यालय है वहाँ जाके हमारे लिए आसानी से ले सकते हैं।
1: आसानी से ले सकते हैं, बिल्कुल।
0: जैसे अभी आपने बताया हवा की हरियर खाद ढेंचा के बीजा के बारे में और एला हमन कतेक दिन में तैयारी कर सकते हैं, एक बाद हमन जो रासायनिक खाद जो डाले आवश्यकता पड़ते हैं ओका बारे में थोड़ा बारीकी से बताता आप।
1: एमना आप मन बहुत सही प्रश्न करे है। ढेंचा बीज 40 से 45 दिन में तैयार हो जाते, फूल आए से पहली अच्छा से जोत के खेत में मिला देना है तथा 3 से 4 दिन पानी भर देना है तथा अच्छा से सड़ जाही। हरी खाद के उपयोग करे के बाद हमन ला कम से कम 40 से 50% तक रासायनिक खाद ला कम डाले बर पड़ते।
0: अच्छा अच्छा, यानी कहीं तो अगर हमन हरियर खाद उपयोग करत हन ढेंचा लगावत हन खेत में तो कहीं न कहीं जो रासायनिक खातु माटी में जो अब्बड़ कन हमन कर रुपया पैसा लगत रही से वो रुपया पैसा बहत जाएगी। तो
1: बिल्कुल बहत जाही और हमन भूमि की उर्वरता क्षमता भी बहुत अच्छा सुधार जाएगी।
0: हाँ, सीतोन बात कहा ताकि हमारे जो भुइया की नमी हवा है वह दिनों दिन बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: नील हरित काई होते का इला बताता आप।
1: अपन बहुत सही क्वेश्चन करे हा। नील हरित काई जेला हमन BGA ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानथन, सूक्ष्म जीव होते जो पानी में पाए जाते ये वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थर करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति ला बढ़ाते।
0: अच्छा,
1: धान सहित कई फसलों पर अत्यंत लाभकारी है नील हरित काई।
0: अच्छा, नील हरित काई ला कैसे बनाते अगर

0: किसान भाई मन बनाना चाहत हवे तो कौन ढंग से बनावे, का का विधि है ला बताता।
1: बहुत सही क्वेश्चन करे है पंचू भैया। नील हरित काई बनाए बर सबसे पहले टंकी बनाना है। टंकी के आकार सामान्य तौर से 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 फीट गहरा हो। ओमा पॉलीथीन बिछाबो, फिर एमा 15 से 20 सेंटीमीटर पानी भर दे देबो। ओकर बाद सिंगल सुपर फास्फेट 1 किलो डालबो, फिर गोबर की खाद या गोमूत्र घोल 2 से 3 लीटर और 1 किलो ताजा गोबर ला घोल के छान लेबो। ये घोल ला अच्छा से मिला देबो पानी टंकी में। 3 से 5 दिन बाद पानी के रंग हरा झिल्ली जैसे हो जाही, वही नील हरित काई है। एला सुखाथन, ओकर बाद टंकी में ही एला सुखाना है ताकि जो सुखाही तेला ना बाद में ला ना 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के दर से हमन खेत में डाल सकत हन।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा जानकारी बताया है आपमन। जैसे कि अभी आप बताए कि ढेचा खाद अगर हम खेत में उपयोग करत हन तो ऊपर से फायदे होते कि हमन जितके ज्यादा हुए प्राकृतिक खेती ला बढ़ा सकत हन, अपन जैविक खेती ला बढ़ा सकत हन। उसने अपन बताता कि नील हरित काई के लाभ होते का हमर किसान भाई मन एला थोड़ा और बताता आप।
1: नील हरित काई ह वायुमंडलीय नाइट्रोजन ला स्थिर करके मिट्टी ला उपजाऊ बनाते, ऐसा ही रासायनिक खाद की आवश्यकता ला कम करते और मिट्टी की संरचना ला सुधारते, फसल की बढ़वार और उत्पादन ला भी बढ़ाते नील हरित काई हर।
0: एक प्रकार से मतलब हमार खेती के उपजाऊ सब ज्यादा फायदा है की दे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा चीज है और ये हमार पैदावार ला भी बढ़ाते नील हरित काई।
0: नील हरित काई ला कौन कौन फसल में हमन डाल सकत हन एला थोड़ा कन और बताता आप।
1: बहुत सही क्वेश्चन करे पंचू भैया। एला नील हरित काई ला हमन ना धान के खेत में 8 से 10 किलोग्राम नील हरित काई प्रति एकड़ डाल सकत हन। उसने ही रवि फसल में, गेहूं फसल में, मक्का फसल में, गन्ना फसल में डाल सकत हन।
0: अच्छा अच्छा, यानी कही तो जितका भी हम फसल अपनावत हन वो में एकर आसानी से फायदा ले सकत हन।
1: बिल्कुल फायदा ले सकत हन।
0: अभी बेरा हम का करथन कि फसल लालच मानी बनी के रासायनिक खाद के उपयोग करथन, तेला कौन प्रकार से हम प्राकृतिक खाद के उपयोग के बारे में हम अच्छा से हमर किसान भाई मन बता सकत हन। ऐसे रासायनिक खाद है हमर जो कीड़ा मकोड़ा वाला नुकसान करते और कौन डर से हम बचा सकी, प्राकृतिक उपचार होते का एला बताता आप।
1: बिल्कुल प्राकृतिक उपचार है कीड़ा मकोड़ा के उपचार बर। अगर हमन बीज ला बोए से पहले ओकर उपचार कर लेथन तब बहुत सारा कीट एवं रोगवाड़ी से बचाव कर सकत हन। एकर बर हमन बीजामृत के उपयोग कर सकत हन। और अगर हमर खेत में रस चूसा कीट एवं इल्ली है एकर बर नीमास्त्र के उपयोग कर सकत हन। ऐसे ही यदि हमर खेत में तना छेदक, फलों में सुंडी, फली छेदक ऐसे कीड़ा पर भी हमन प्राकृतिक उपचार ब्रह्मास्त्र करके है ये सब ला हमन उपयोग कर सकत हन।
0: मतलब एक प्रकार से हमन अगर विधि से करत हन तो जितका भी रासायनिक कीटनाशक माध्यम से जन कीड़ा मकोड़ा है जो नुकसान होते से ओला हमन बचा सकत हन।
1: बिल्कुल बचा सकत हन, प्राकृतिक उपचार से हमन बचा सकत हन एला।
0: अभी अपन बताया कि बीजामृत उपचार बर अगर हम किसान भाई मन अपन घर में बनाना चाहत हवे तो कैसन ढंग ले बनावे, का विधि हवे एला आप बताता।
1: बिल्कुल सही बोले है किसान भाई मन। बीजामृत बनाए बर सबसे पहले तो 5 किलोग्राम आसपास देसी गाय के ताजा गोबर ला कपड़ा में बांध के 20 लीटर पानी में 12 घंटा पर लटका देबो। फिर एक बाटल में 1 लीटर पानी लेबो, उमा 50 ग्राम चूना डाल के रात भर छोड़ देबो। दूसरे दिन गोबर के बंडल ला पानी में 3-4 बार निचोड़ देबो। ओकर बाद घोल में मेड़ या पेड़ के नीचे से 250 ग्राम 1 पाव आसपास मिट्टी डालबो। फिर 5 लीटर देसी गौमूत्र और चूना के पानी मिलाबो। फिर तैयार हो जाही बीजामृत ला 40 से 50 ml प्रति किलोग्राम बीज ला उपचार कर छाव में सुखा लेना है। इस तरह के सामान कीड़ा मकोड़ा के बचाव कर सकत हन भैया बीज उपचार करके।
0: कुछ बच्चा ऐसे रहे कि हमन रासायनिक कीटनाशक रासायनिक खातू माटी के उपयोग करके जमीन के जो उर्वरक क्षमता ला घटा चुके हमन। अभी हमन प्राकृतिक खेती के डहर चलत हवन, सरकार भी चाहते है आपके विभाग भी चाहत हवे कि जितके ज्यादा हुए हम किसान भाई मतलब प्राकृतिक खेती के डहर लेके चली, आने बाने की जन जागरूकता के माध्यम से प्राकृतिक खेती जैविक खेती पर हम किसान भाई मतलब बारम्बार हम आकाशवाणी के माध्यम से कहा था हवन कि जितके ज्यादा हुए प्राकृतिक खेती ला महत्व दी। प्राकृतिक खेती करबो तो हमारे किसान भाई मन ला का लाभ मिलही एला बताता।
1: बहुत सही क्वेश्चन करे है पंचू भैया। हमन प्राकृतिक खेती करबो तो सबसे पहले लाभ मिली भूमि के उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हुई। अब यह कैसे हुई, सूक्ष्म जीव के सक्रियता बढ़ा के लंबा समय तक उर्वरता बनाए रखथन प्राकृतिक।

0: खेती करके। दूसरा लाभ है कृषि लागत में कमी। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधन ला उपयोग करके खेती करथन ता उर्वरक और कीटनाशक में होने वाला खर्च कम हो जाते, किसान के आय में स्वाभाविक है वृद्धि हो जाही। ऐसा ही पर्यावरण संरक्षण है भैया, प्राकृतिक खेती से भूमि जल एवं वायु प्रदूषण नहीं हुए। चौथा है मानव स्वास्थ्य पर भी लाभकारी होते प्राकृतिक खेती से, काबर की हमन रासायनिक उर्वरक कीटनाशक ला उपयोग नहीं करन, जेमा हमर फसल के माध्यम से हमर शरीर में नहीं जाए और हमन स्वस्थ रहो। ऐसा ही आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली है प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती अपना के हमन आत्मनिर्भर बन जाथन, काबर की हमन बाहरी खाद दवाई पर निर्भर नहीं रहन, प्राकृतिक रूप से हमर पास उपलब्ध संसाधन से ही खेती कर सकथन। ऐसा ही प्राकृतिक खेती के बहुत सारा लाभ।
1: प्राकृतिक खेती जैविक खेती अगर करथन तो जितका भी खातू माटी में जो रुपया पैसा लगत रही सब है वो रुपया पैसा हमारे बाहर
0: बांट जाए, बिल्कुल
1: मतलब आर्थिक रूप से हम थोड़ा कम सशक्त हो जाए,
0: सशक्त हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए,
1: आत्मनिर्भर बन जाए। संगे संग जो भूया की उपजाऊ क्षमता दिनों दिन घटत जाते रही से वो उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते
0: बढ़ा सकथन, बिल्कुल प्राकृतिक खेती अपना के।
1: बहुत अच्छा रही से आज के विषय है कि खेत बचाओ अभियान के तहत अगर हम प्राकृतिक खेती करथन तो ओकर से कौन प्रकार से हम लाभ ले सकी, संगे संग प्राकृतिक खेती अगर हम करथन कौन विधि से एक खेती कर सकी, एक बारे में बारीकी से विस्तार से आज हमारे पहुना मन बतन हवाए मरिन हवाए छत्रपति महिलाने कृषि विस्तार अधिकारी तखत पुले। तो आपन के बहुत बहुत धन्यवाद महिलाने जी, अवैया बेरा में फिर अपन कर खेती के से जुड़े नवा विषय में गोड़ बात करबो। एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम जय जोहार।
0: आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद पंचू भैया और हमारे सुनैया भाई बहनी मन ला राम राम जय जोहार।
2: संगी हो अभी हमन सुनत रहे भेंट वार्ता जिमा खेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती अपनाना है, ये विषय में जानकारी देवत रही हैं श्री छत्रपति महिलांगे ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी तखतपुर जिला बिलासपुर ले। इखर सो गोट बात करत रही हैं हमारे पंचू भाई मन, आवो सुनथन संदेश मल्ला।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं।

0: आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
1: सच है
0: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
1: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: संगी हो परंपरागत खेती अपनाए के सलाह सरकार घलो देवा थे। हमू आप मन के संगवारी हन, सचेत हन, हमू मन घेरी बेरी आप मन ले बात ला चेतात हन। कावर के भूइया के उर्वरक क्षमता ला स्थायी रूप में बनाए बर हमला प्राकृतिक खेती जोन परंपरागत खेती है ओखर डहर लहुटेज ल पड़ही। काबर के जोन प्रकार ले आनी बानी के शरीर में बीमारी हो थे न संगवारी हो, तो एखर नाम से हमन के जोन पुरखा मन की खेती रही से उखर परंपरा रही से वो बहुत ही आवश्यक है। ये विषय में और गुड बात करो, इतका बढ़िया अतका सुघर जानकारी सुन के मन करत हो है कि बढ़िया एक ओठो गीत सुन लेते न। तो आओ भाई आप मन के बात हम मनन सुनथन ये गीत में जे लगावत है लक्ष्मण मस्तूरिया मन।

संगी हो ये माया भरे गीत जे लगावत रहिन हे लक्ष्मण मस्तुरिया। आउ आज हमन ला मंडी के भाव मिले है संगवारी हो, धान IR 36 के 1900 रुपया कुंटल। जहाँ तक मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज के तापमान अधिकतम 40 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री रहे। संगी हो आज हम बात करें जैविक खेती के। जैविक खेती एकर बर बहुत जरूरी है,

काबर के हमर घर म हमन गरुआ गाय तको पोसे हन। अब गरुआ गाय जैविक खेती ये सब एक दूसर के पूरक है। काबर के हम जन गरुआ पोसे रहन ओकर ले हम दूध के उत्पादन गोमूत्र है गोबर है ये सब के प्रयोग जैविक खेती में बढ़िया होते। संगे संग जब हम जैविक खेती करे लगथन तो उत्पादन जो अनाज है उत्पादित वो तो शुद्ध होबे करते। आजकल बाजार मन में उखर जो भाव है सामान्य अनाज ले घला बहुत ज़्यादा है दो गुना तक के है। काबर लोगन मन सचेत होए लगे हैं अपन शरीर के प्रति और सब जन चाहत है कि खाना में वो सब पोषक तत्व होना चाहिए जन रहना चाहिए। जिसे अभी हम देखते हैं जिसे पताले हमन उपयोग करत हन मतलब ऐसे लगते हैं कि प्लास्टिक के कई दिन ले रखे रहो जस के तस सेवाद नाम चीज नहीं कहे मतलब जौन पुराना बीजा है हमर पुरखा मन के जौन उखर परंपरा है वो बहुत सूझ बूझ वाले रही से ओकरे से तर उमन बहुत ज़्यादा समय ले स्वस्थ जीवन जियत रहे हैं। तो कहे के मतलब ये है आज के हमार खेती के जौन परंपरा है वो बदलाव मांगत है और अभी हमन नहीं चेतबो तो निश्चित तौर ले आगे जा के हमन ला बहुत ज़्यादा समस्या के सामना करे पड़ी। तो शुरुआत हमन ला करना है संगी हो काबर के किसान मन ला भूया के भगवान कहे जाते और भगवान के ये कर्तव्य घला है कि वो जेला पोसा थे जिन पालनहार जेखर नाम लेके ओला कहे जाते वो मन ला शुद्ध खिलाए पौष्टिक खिलाए संतुलित खिलाए। तो हम तो यही कहबो कि हमारे जतका संगवारी हैं खेती के जौन परंपरा है बोला फिर जैविक परंपरा अपन परंपरागत खेती रहर आप मन लौटाओ और बढ़िया उत्पादन करो निरोग रखो शरीर ला और संगे संग ये जो जिंदगी के मजा है वो निरोगता में ही है आरोग्यता में ही है। तो जैविक खेती अपनाओ ये हमार कहना है संगवारी हो। आज हमन बहुत बढ़िया गोट बात करें मन तो लगा थे गोट बात करते रही फिर कोनो भी जो गोट बात है ओकर एक निश्चित समय सीमा होते। आज के गोट बात करत करत हमार बेरा कैसे बुलग गए पते नहीं चलिस। तो आज के कार्यक्रम में दाओ अपन मैं आरू चैतू भाईला विदा। राम राम जय जोहार।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। अभी आप किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं और अब लीजिए पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के इस अंक में आज हम सजा कर लाए हैं अलीशा चिनॉय के गाए गीत। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत से।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कलाकार अलीशा चिनॉय के गाए गीत। और अब आइए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं और अलीशा चिनॉय का गाया ये गीत सुनते हैं।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय के गाए गीतों को। आइए कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद लेते हैं।

अलीशा चनोई के गाए इसी गीत के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। रात के 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनी गंधा।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर ऐसा था जब सिर्फ गीत संगीत की वजह से ही फिल्में हिट हो जाया करती थीं। 60 और 90 के दशक के बीच आरडी बर्मन एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके गानों ने उन्हें लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया। पंचमदा के नाम से पहचाने जाने वाले आरडी बर्मन के गाने आज भी लोग बड़े शौक से सुनते हैं और गुनगुनाते हैं।

आरडी बर्मन का पूरा नाम राहुल देव बर्मन था। उनके पिता सचिन देव बर्मन भी मशहूर संगीतकार थे। आरडी बर्मन का जन्म 27 जून 1939 में हुआ था। आज हम उनके जयंती के अवसर पर उनकी बातें करेंगे इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, आरडी बर्मन के जन्म के बाद बॉलीवुड एक्टर अशोक कुमार अपने दोस्त सचिन देव बर्मन के घर बधाई देने पहुंचे थे। तब सचिन ने अपने बेटे का नाम तबलू रखा था। बताया जाता है कि अशोक कुमार के सामने आरडी बर्मन बार बार मुंह से पा पा की आवाज निकाल रहे थे। जब वह रोए तो अशोक कुमार बोले, अरे यह बच्चा तो रोता भी पांचवें स्वर में है। बताते हैं, तभी से उनका नाम पंचम भी पड़ गया था।

पंचम दा बचपन से ही धुने बनाने लगे थे। बेटे के इस हुनर की जानकारी उनके पिता को तब हुई जब पंचम स्कूल में बेहद कम नंबर लेकर आए। इस घटना से घर में सन्नाटा पसर गया। पंचम का रिपोर्ट कार्ड देखकर उनके पिता ने पूछा कि आखिर करना क्या चाहते हो। पंचम दा ने उत्तर दिया, संगीतकार बनना चाहते हैं और वो भी आपसे बड़ा। पिता ने जवाब दिया, ये काम इतना आसान नहीं है। फिर उनके पिता ने पूछा, कोई धुन बनाई है? इस पर पंचम ने एक नहीं पूरी 9 धुनें अपने पिता के हाथ में रख दी। इसके बाद उनके पिता ने कुछ नहीं कहा। आरडी बर्मन को पहली फिल्म मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने पिता के ऑर्केस्ट्रा से की थी। बताया जाता है कि फिल्म छोटे नवाब के लिए महमूद पंचम के पिता एसडी बर्मन को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिल्म में म्यूजिक देने से मना कर दिया। तभी उनकी नज़र पंचम पर पड़ी। उन्होंने एक रोचक वाक्य के बाद महमूद ने पंचम को ये फिल्म छोटे नवाब ऑफर कर दी। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

0: किसको?
1: आहो,
0: कल क्या हो? अरे ये तो दिन की है जिंदगी।
2: आर डी बर्मन एक ऐसे संदिग्ध साधक थे जो म्यूजिक में अक्सर ही कुछ न कुछ नया प्रयोग करने वालों के रूप में मशहूर थे। इनकी सबसे खास बात यह थी कि वो कभी भी और किसी भी चीज़ से म्यूजिक पैदा करने का हुनर रखते थे, फिर चाहे वो सोडा का खाली बोतल हो या फिर कार का बोनट, स्कूल की बेंच, पंचम डाको जैसे हर चीज में संगीत सुनाई देता था। देवानंद की फिल्म जिसका नाम डार्लिंग डार्लिंग था, इसका दी गीत था रात गई बात गई। इसमें पंचम ने कुछ ऐसा किया कि किशोर कुमार और देवानंद भी हैरान रह गए। पंचम दा ने अपने साथी मारुति राव कीर की पीठ से ही म्यूजिक पैदा कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि वो अपनी शर्ट उतारें और इसके बाद पंचम ने उनके पीठ पर थाप लगाई। इससे जो आवाज़ निकली उसे पंचम ने धुन के तौर पर इस गाने में प्रयोग कर लिया। और इस तरह पंचम दा के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह बारिश की बूंदों के साउंड का रिकॉर्ड करने के लिए घंटों बालकनी में बैठे रहते थे। वो रोजमर्रा के काम आने वाली चीज़ों जैसे सोडा बॉटल तक को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते थे। वो अलग तरह का म्यूज़िक बना सकें इसके लिए अपने म्यूजिशंस को किसी भी हद तक ले जाकर देखते थे प्रयोग करने के लिए। और उनकी इसी धुन ने सिने जगत को एक से बढ़कर एक लाजवाब गीत दिए।

श्रोताओं, करियर की शुरुआत में ही फिल्म फंटूश में पंजम दा की बनाई धुन पर गीत ए मेरी टोपी पलट गया उनके पिता एसडी बर्मन ने रिकॉर्ड की और उसे अपनी फिल्म में इस्तेमाल कर लिया। इस तरह उनके फिल्मी कैरियर में आने के पहले ही संगीत में उनका डेब्यू हो चुका था। श्रोताओं, पंचम ने पारंपरिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का भी बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया था। मादल का घर फिल्म के गाने तेरे बिना जिया जाए ना, जोशीले का गाना दिल में जो बातें हैं, आज चलो हम कर लें, जीवा, बरसात की रात में पंचम ने खूबसूरत प्रयोग किया और इस यंत्र से शानदार धुनें भी निकाली जो आज भी सुनने वालों को हैरत में डालती हैं। गायिका आशा भोसले की आवाज़ का सही प्रयोग पंचम ने ही किया। आशा भोसले की गायकी की रेंज को उन्होंने नई बुलंदी दी। और आइए अब सुनते हैं ये गीत।

शुरू हुई। यहाँ आर डी बर्मन ने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद, समता प्रसाद से तबला बजाना सीखा। इसके साथ ही आर डी बर्मन माउथार्गन बजाना भी जानते थे। आर डी बर्मन संगीतकार सलील चौधरी को भी अपना गुरु मानते थे। पंचम दा ने 1965 में भूत बंगला फिल्म में एक्टिंग भी की थी, लेकिन पंचम को असली पहचान तीसरी मंजिल फिल्म से मिली, जिसका संगीत लोगों को बहुत पसंद आया। इसके बाद पंचम दा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा।

संगीत में आर डी बर्मन के विशेष योगदान को देखते हुए 1983 में उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म थी सनम तेरी कसम। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड एक बार फिर से उन्होंने लिया 1984 में मासूम फिल्म के लिए, और इसके बाद 1995 में उन्हें एक बार फिर से बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर चुना गया। फिल्म थी 1942 ए लव स्टोरी। पंचम को लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक पर ही इनकी पकड़ थी, तो ये कहना गलत है। पंचम को भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी गहरी समझ थी। उनकी तरबियत और तालीम भारतीय शास्त्रीय संगीत में हुई थी। फिल्म अमर प्रेम का गीत रहना बीती जाए में उनकी शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ की झलक मिलती है।

आर डी बर्मन ने अपने जीवन काल में हर तरह का संगीत दिया। आज के युग के लोग भी उनके संगीत को उतना ही पसंद करते हैं। आज भी फिल्म उद्योग में उनके संगीत का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। अपने संगीत के मधुरतम धुनों की सतरंगी छटा बिखेरता हुआ ये सितारा 4 जनवरी 1994 को इस संसार को अलविदा कह गया, लेकिन उनका संगीत अमर है और हमेशा उनके गीत संगीत प्रेमियों को विभोर करते रहेंगे। आर डी बर्मन को विनम्र श्रद्धांजलि सहित रजनीगंधा का ये अंक पूरा होता है।

0: यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार। हम आकाशवाणी के दिल्ली
1: नमस्कार,
0: केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद

0: महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat.

0: के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंपेगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपेगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृह मंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर

सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया रहा है। श्रीकांत और रौनक चौहान फाइनल में पहुंच गए। सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में

0: समाचार अभी हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।
1: सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोता, गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से। आवाज़ अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से। आवाज़ ए आर रहमान श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। ये गाना
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर। और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने कानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एसडी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एसडी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को

सचिव ने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे क्योंकि उनकी भी

बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एसडी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आख

हाँ फोन मत करना अभी, ये हमारे यहाँ वो बैठ गया, वो मोबाइल से चला रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल से चला रहा हूँ गाना अभी, वो मत मत करना।

गुरुदत्त कोलकाता आए। आरडी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एसडी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का

दिलचस्प बात है, रोजाना सुबह सचिन देव बर्मन टहलने के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई, एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहाँ किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुने सुनो तो सही। और बस यही हुआ, एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुने सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूँ। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आर डी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचा

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूँ यारों। गुलजार चले गए, पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई, गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के 1 बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूँ। गुलजार नीचे उतरे, पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये

निसार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थी। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉल बेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था

आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए। गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है, इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

सिस्टम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया। जैसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मियां, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया।

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव नहीं।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार आर डी बर्मन पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।

सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज की छुवन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की कसम।

मुझे बेपनाह शिद्दत से चाहने वाले, तुम्हारी चाहत विसाल की आखिरी हदों तक फकत मेरे नाम होगी। मुझे यकीन है वो पल वो लम्हा कि मेरे बालों पे, आंखों पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज्मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आंखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आंखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क जो दिखता सबको है, मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में, किसी और आसमान पर, किसी और सरजमीन में।

साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार

साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के दो गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है।

0: That is the end of this news bulletin.
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन सभा संपन्न होती है। कल सुबह के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।